0: के मारू दो दो घूंट, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। 89.6
1: 89.6 मिर्ची।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

अरे टोली बना के निकले ग्वाले करने को हुड़दंग, गोविंदा के दिन सब हो गए हैं गोविंदा के संग। अरे समझे,

0: पके माटी के पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित दूषण पर प्रधान हो तो काकश्रेष्ठा बकोना ध्यान और स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।

Yeah, भाई तेरा बस लिख तगाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए जब

देखिए कभी ये अफसाना बनाते हैं तो कभी ये आशिक बनाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली दीवाना बनाए रखते हैं ये। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिम्पली आफरीन, राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और हिमेश रेशमिया की आवाज में आपने ये गाना सुना। व्हाट अ फ्रेश सॉन्ग, बट लेकिन पूरी तरह से वाइब तो ये 2000 के गाने की ही आ रही थी। मतलब हिमेश है इस गाने में, इट वॉज फीचरिंग इमरान हाशमी, और परफेक्ट कॉम्बो आई वुड से। एंड लेट्स बी फ्रैंक, हिमेश के ना टू टाइप्स ऑफ फैंस रहे हैं। फैंस तो मतलब एक क्रेजी फैंस रहे हैं, और एक ऐसे होते हैं जो सिलेक्टेड सॉन्ग्स उनके पसंद करते हैं, और एक तीसरे टाइप की कैटेगरी लोग हैं जो हिमेश की आवाज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। सो यार, बट आई लाइक हिमेश इन आई फॉल इन द सेकेंड कैटेगरी, आई लाइक हिमेश इन सम ऑफ द सॉन्ग्स। हैविंग सेड दैट, हम आ गए हैं हमारे हफ्ते के आखिरी दिन में, लेकिन ये है हमारे महीने का पहला दिन, 1st of October। फाइनली इट्स जस्ट लास्ट 3 months left for the year to finish, यार, bringing me to the realization के हाँ जी, वक्त की रफ्तार तो बस तेजी से चल ही रही है। और इसी के साथ हमें भी अपने जो है, अगर resolutions नहीं complete किए हैं या फिर अभी भी सोच रहे हैं, तो यार उसकी भी आपको रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। With this एक अच्छी चीज हुई है कि यार 1st of October जो आया है, महीने की पहली तारीख आई है, वो भी वीकेंड के तरफ, तो बस दिस वीकेंड तो पूरे अमीरी में निकलने वाले हैं आपका, मतलब बाहर खाना, शॉपिंग, घूमना फिरना, सब बात करेंगे यार ऑन दिस शो मिर्ची मॉर्निंग्स विद योर्स वन एंड ओनली सिंपली आफरीन, जो माइक से दिल तक आपके पहुंच जाती है। सो वेरी गुड मॉर्निंग, एंड शो की शुरुआत करते हुए अगला गाना आपका इंतजार कर रहे हैं ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. Na wird bala burga. Milci, burga.
2: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
3: Hello,
4: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
3: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
4: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
3: हाँ जी.
4: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
3: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
4: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे. तीन लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
3: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
4: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं मेरे को पता था. मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
3: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
4: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये
3: तो
4: जाना सनम.
3: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
4: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप.
3: ठीक है, मैं क्या करूँ बताइए ना.
4: आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
3: है. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
4: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ पे श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
3: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
4: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
3: हाँ बताइए
4: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
3: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
4: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
3: यार आप लोग किसी दिन ना मतलब कुकड़ू को.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा.
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.

0: वेल, जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। और जुबिन नौटियाल की आवाज ऐसी है ना कि सर्टेन काइंड ऑफ ट्रैक्स जस्ट सूट हिम ओनली, मतलब वो ऐसा लगता है इनके लिए ही खास बने हैं। वेल, इसी के साथ वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और यहाँ पर गुड मॉर्निंग के मैसेजेस तो बस मैं इंतजार करती हूँ कि मैं कब ये पढूं। वेल, स्टार्टिंग विद इमरान, वेकिंग अप इज ईजी व्हेन आई नो योर वॉइस इज गोइंग टू बी ब्राइटन अप द एयर वेव्स, हैव अ सुपर चार्ज शो। अरे वाह, क्या बात है भाई, गुड मॉर्निंग इमरान। देन आई हैव गुड मॉर्निंग आफरीन, हैप्पी वीकेंड कहते हुए आली शान, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। हरपाल संधू का मैसेज है, गुड मॉर्निंग कहते हुए। रॉबर्ट डिसूजा फ्रॉम मुंबई सेज गुड मॉर्निंग एंड विद दिस, अगर आपको भी कहना है तो 5000196 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आकर आप अपना मैसेजेस डाल सकते हो। मीनवाइल, जहां जुबिन नौटियाल की बात कर रही थी, उनका गाना मैं फिर से बजाऊंगी, लेकिन उससे पहले
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: Weather update. अब बस क्या है ना कि वीकेंड इज हियर, है ना, वी आर टुडे, वाओ, थर्सडे 1st अक्टूबर, क्या मजेदार वीकेंड है यार। मतलब महीने के पहले दिन जहां पर हम ऐसे अमीर रईस फील करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स सैलरी आ चुकी होती है और वो वीकेंड के साथ लगकर आए, तो भाई जो चाहिए करो। सो इफ यू हैव प्लान्स कि चलो गाड़ी निकलना है, कहीं घूमना फिरना है, देन थोड़ा सा वेदर पे हालचाल देखो। 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, 32 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, और ह्यूमिडिटी जो है अराउंड 63% पर है, हवाएं जो है 10 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है। ऑल इन ऑल जो हमारा वेदर है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, आंकड़ों में तो नहीं लेकिन ऐसे महसूस करने में, अच्छा एकदम अच्छा तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन येस, इट्स गोइंग टूवर्ड्स द प्लेजेंट वन, स्पेशली इवनिंग्स की अगर बात करें। तो प्लान जो है ना वीकेंड का, शाम के लिए ही रखो।
2: एक दिन मोहब्बत।
0: मीनवाइल, जुबिन की बात कर रही थी मैं, तो जुबिन नौटियाल का ये गाना बीइंग माय मोस्ट फेवरेट लाइन प्लेइंग राइट हियर फॉर यू ऑन 89.6 पर शी वन इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
5: उत्तपा उत्तपा कौन?
6: उत्तपा मैं दो डोसा और सांभर ऑर्डर किया था, आया क्या?
5: खटखट हू दैट?
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: विशाल मिश्रा, हंसिका पारिक की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। आप सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: और देखिए, ऐसा कई बार होता है ना कि हम हमारे एल्डरली पेरेंट्स को एयरपोर्ट भेजते हैं, ट्रैवल के लिए भेजते हैं, यहाँ बुला रहे हैं या फिर वापस भेज रहे हैं अपने कंट्री। सो वी उनसे ज्यादा ऑनेस्टली ना वी आर नर्वस कि यार ये कैसे एयरपोर्ट पर सब ठीक तो होगा ना, ये मैनेज तो कर पाएंगे ना। और बस इसी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एहसान सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड केयर फॉर द एल्डरली। एक न्यू प्रोग्राम कुछ इस तरह से है जहां स्पेशली ओल्डर ट्रैवलर्स को एयरपोर्ट जर्नी के बारे में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए है। इसमें पीरियोडिक गाइडेड विजिट्स टू हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑर्गेनाइज की जाएगी जहां ओल्डर पार्टिसिपेंट्स प्रैक्टिकली समझेंगे कि एयरपोर्ट जर्नी के डिफरेंट स्टेजेस कैसे वर्क करते हैं, अवेलेबल फैसिलिटीज क्या है, डिजिटल सर्विसेज कैसे यूज करनी होती है एंड जर्नी के किस स्टेज पर असिस्टेंस चाहिए तो कैसे और कहाँ रिक्वेस्ट करनी है। एंड आई रियली लाइक दिस पार्ट जहाँ पार्टिसिपेंट्स से फीडबैक भी लिए जाएंगे, बट ऑब्वियसली ना मतलब उनको क्या तकलीफें आती हैं एंड एट विच पॉइंट एट विच ये क्या कहते हैं एयरपोर्ट के कौन सी जगह पर, तो ये एयरपोर्ट खुद समझेगा। और अगर वो कोई डिफिकल्टी है, एक्चुअल डिफिकल्टी है, उसको फ्यूचर सेशंस में एंड सर्विसेज में इट कैन बी इम्प्रूव्ड। वेल, ये इनिशिएटिव जो है एंटायरली दिस वाज टेकन अराउंड डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस के आसपास लॉन्च हुआ है ये। एंड फॉर मी आई फील ना एक्सेसिबिलिटी का मतलब सिर्फ रैम्स, व्हीलचेयर्स या स्पेशल काउंटर्स नहीं है, कभी कभी किसी जगह को कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर पाना भी इंडिपेंडेंस होती है, स्पेशली हम एक्सपैट्स के लिए जिनके पेरेंट्स कभी कभी अकेले ट्रैवल करते हैं। और अगर उनका सफर थोड़ा ईजियर हो तो हमारा पहुंच गए कॉल करो वाला टेंशन भी ना थोड़ा सा कम हो जाता है ना। और वो एक लेकिन हमेशा रहता है इंतज़ार के बस सही सलामत हमारे पास तक पहुंचे और सही सलामत अपने घर तक पहुंचे, ये फिकर लेकिन कंटिन्यू रहेगी है ना। माइक से दिल तक आप ट्रेन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। इट्स हॉट

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अर्शद वारसे, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
2: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए।
3: वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है।
4: पिक्चर पिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
5: चार फिल्में, उनकी दो, एक सीरीज, एक फिल्म। मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
1: राजकुमार हिरानी, मैं एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑन।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है। अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक। Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the
1: Everyone be as unemployed as you। आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's all।
0: Bollywood Boldal, Bollywood Bollywood Bollywood Boldal,
7: only on मिर्ची, it's hot।
6: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है। अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate

0: खिल और ध्वनि भानुशाली की आवाज में ये प्यारा सा गाना राइटर ऑन मिर्ची। और हम कल ही बात कर रहे थे इस बारे में, मतलब कतर वर्सेस यूएई के मैच के बारे में, और क्या जोर दिखाया है दोनों ही टीम्स ने। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे सिंपली आफरीन को। और आज की सबसे बड़ी खबर में
1: क्या खबर कतर?
0: खबर ये है कि हम तो कह ही रहे थे कल के कतर के ग्रुप बी के टॉप करने के लिए, अगर ग्रुप बी का इसमें टॉप करना है तो कतर को यूएई के अगेंस्ट जीत कंफर्म चाहिए होगी। बट बता दूं मैं दोस्तों, इट्स नॉट अ बैड न्यूज बट डेफिनेटली नॉट अ गुड न्यूज। लेकिन बीच की खबर ये है कि मैच जो है वो ड्रॉ हुआ है। बट द गुड न्यूज इज ऑल्सो कि गल्फ कप की जर्नी जो है वो वेरी मच कंटिन्यूज। कतर और यूएई का मैच जद्दा में 1-1 से फिनिश हुआ। अलमोइज अली ने कतर को 33rd मिनट में लीड दी बिफोर यूएई इक्वलाइज्ड इन फर्स्ट हाफ एट अ टाइम। दोनों टीम 7 पॉइंट्स पर फिनिश हुई, बट बेटर गोल डिफरेंस की वजह से यूएई टॉप्ड ग्रुप बी एंड कतर फिनिश्ड सेकंड। अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट, यानी सैटरडे को सेमीफाइनल में कतर फेसेस होस्ट सऊदी अरेबिया व्हाइल यूएई टेक्स ऑन ओमान। फाइनल ट्यूसडे को है, सो ग्रुप स्टेज डन। अब टूर्नामेंट नॉकआउट मोड में है। सैटरडे का प्लान, फुटबॉल फैंस अभी

किसी कैलेंडर में ब्लॉक कर दो. एंड आई एम श्योर इफ यू आर अ फुटबॉल फैन यू मस्ट हैव ऑलरेडी डन दैट. सो वेल ऑल द बेस्ट अल अनाबी बिकॉज यू आर जस्ट टू मैचेस अवे फ्रॉम द ट्रॉफी. मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक. अगला गाना आयुष्मान खुराना की आवाज में. हाँ मेरे लिए भी ना तुम काफी हो. Have a lovely morning, yeah, and enjoy this song on which it's on.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

अच्छा बताइए कि हम जब हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं ना, तो वी रीड इट, वी सी इट, बट व्हाट इफ यू कुड फील इट? हाँ, हिस्ट्री को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? किसी पुरानी फोटोग्राफ को देखकर, एक सेंचुरीज ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़कर, किसी हिस्टोरिक मैप के डिटेल्स, टाइनी डिटेल्स को नोटिस करके। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर आप देख नहीं सकते हो या सुन नहीं सकते, तो वो हिस्ट्री आप तक कैसे पहुंचेगी? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड कतर नेशनल लाइब्रेरी हैज अ रियली इंटरेस्टिंग आंसर टू दिस। QNL's हेरिटेज लाइब्रेरी हैज अनवील्ड अ न्यू एक्सेसिबल डिजिटल कियोस्क थ्रू विच 100 से ज्यादा सिलेक्टेड हेरिटेज आइटम्स को पीपल विद डिसेबिलिटीज डिफरेंट वेज में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर विजुअली इम्पेयर्ड विजिटर्स देर आर ब्रेल इंटरफेसेस, ऑडियो डिस्क्रिप्शंस एंड टैक्टाइल रिप्रेजेंटेशंस। मतलब सिलेक्टेड हिस्टोरिकल मटीरियल को सिर्फ सुनना नहीं है, टच के थ्रू एक्सप्लोर भी किया जा सकता है। एंड डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग विजिटर्स के लिए बो हमद, अ डिजिटल अवतार यूजिंग कतरी साइन लैंग्वेज, इन्फॉर्मेशन को और भी ज्यादा एक्सेसिबल बनाता है। QNL says दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज इन वन डिवाइस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। हाँ जी, एंड मुझे इस न्यूज में टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक थॉट अच्छा लगा कि हम अक्सर कहते हैं हिस्ट्री बिलोंग्स टू एवरीवन, बट हिस्ट्री तभी एवरीवन की होती है ना, जब उसे एक्सपीरियंस करने का दरवाजा भी एवरीवन के लिए खुला हो। And that's what I think, technology is being exactly used where it actually matters. Mike se dil tak Afreen hai aapke saath, writer on Mirchi, it's hot. Let's get down on it.

0: Well, that is Ganesh Hegde की आवाज में ये गाना, and I think so ये एक ही ऐसा गाना आया था 90s indie pop के दौरान, and we were quite fascinated कि यार ये बंदा डांस भी अच्छा कर लेता है, गाना भी अच्छा गा लेता है. In fact, he was quite handsome as well, and the video was also very interesting. बहुत ही सारे visual effects थे, and मज़े का video, and just it, मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक ही गाना आया है गणेश हेगड़े की आवाज में. So well, एक अच्छा nostalgic drive आपको हो गया. Moving ahead, कविता सीट और नीरज श्रीधर की आवाज में ये गाना है राइट ऑन मिर्ची. मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 7:13 की तरफ, और कॉकटेल 2 से ये गाना एंजॉय कीजिएगा. माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट. 89.6
1: मिर्ची.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Gambala. Murga, murga. La virtua la murga. Milci, murga.
1: हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ
1: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
2: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दब रहा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
2: हेलो
1: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा
1: मैं देख बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हाँ मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल
1: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
2: आराम कर दिया तुम
1: जीना बता रहा यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना तो बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी, मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट फेस्टिविटीज की प्लानिंग इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
6: Cut, cut.
7: Who that?
6: Jassi.
7: Jassi? Kaun si wali Jassi?
6: Jassi who has come, auntie ji?
7: Cut, cut. Who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, my friends, looks like my weekend is going to be funny. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड वीकेंड पर. जब सबसे बड़ा सवाल मेरा होता है ना कि यार ओटीटी पर क्या देखें, आई एम श्योर ये सवाल आपका भी होता होगा.
2: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है.
3: फ्रेश है, एकदम नया आया है.
4: अरे मार्केट में नया क्या है?
1: पहले तो हम बात करेंगे कुछ नए की नहीं, कुछ पुराने की. यानी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले मैं बात कर रही थी चुंबक पार्ट वन के बारे में. एक ऐसा सीरीज जो बहुत ही ज्यादा फनी है ना. फनी का भी एक ये होता है, सबका फनी और कॉमेडी ना अलग रहता है, सेंस ऑफ ह्यूमर. सो अगर आप उस कैटेगरी में हो जहां पर आपको सारा भाई पसंद था, खिचड़ी पसंद था, देन दिस चुंबक इज डेफिनेटली फॉर यू. बिकॉज वही मेकर्स ने बनाया है एंड स्टार कास्ट इज स्टेलर. आई शुड से दैट बिकॉज देवेन भोजानी, नीना गुप्ता, सुमित व्यास, सुमित राघवन, अर्जुन मिजलानी एंड सो मेनी ग्रेट एक्टर्स. और ये एक चुंबक कॉलोनी के बारे में जहां पर ये सारे नेबर्स एक दूसरे की जिंदगी में इतने घुसे रहते हैं एंड इट्स हार्डकोर कॉमेडी आई वुड से. सो ये जो है ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है और इसका पार्ट टू जो है वो आ गया है. सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि उसके आठ एपिसोड्स वो आ गए हैं. 15-20 मिनट के एपिसोड होते हैं, वेरी इजी टू वॉच. कॉमेडी और एक है जो प्राइम पे है, वो है दोपहिया सीजन टू. अगर आपने सीजन वन देखा है जिसमें गजराज राव, रेणुका शाहने, स्पर्श श्रीवास्तव एंड भुवन अरोरा है, वेरी गुड परफॉर्मेंस और बड़ा ही मजे का ये भी है सीरीज जहां पर एक गांव में है और गांव की पूरी कहानी है. इट्स स्वीट, ठीक है. फैमिली कंटेंट के बारे में आते हैं, इमोशनल कंटेंट थोड़ा, जहां ओ माई डॉग नेटफ्लिक्स पर आई है, जहां एक दिस इज पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म बाय द वे, और एक छोटा सा बच्चा है जो अपने मिसिंग डॉग को ढूंढ रहा होता है और वो डॉग भी अपने मिसिंग ओनर को ढूंढ रहा होता है. सो बेसिकली एनिमल लवर्स जो है उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा. अब फिर से आते हैं थोड़ा सा कॉमेडी, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली कॉमेडी ड्रामा. बकायती सीजन टू ये भी Z5 पर आ चुका है, जहां कटारिया फैमिली इज बैक विद मनी प्रॉब्लम्स है इनके पास, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कलेश है फैमिली के, एंड आई थिंक सो एवरीवन मिडिल क्लास जो बिलोंग करते हैं दे विल ऑल्सो रिलेट टू इट कि यार ऐसे किरदार कोई ना कोई आप अपने फैमिली के साथ में बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे. तो बहुत कुछ हो गया यार, कॉमेडी हो गया, फैमिली ड्रामा हो गया, इमोशनल कंटेंट हो गया. बेसिकली आई फील दिस वीकेंड वॉच लिस्ट इज यू रेटेड. नहीं तो क्या होता है ना कि जनरली ओटीटी पर अमूमन बहुत ज्यादा ए रेटेड कंटेंट आता है, फैमिली के साथ बैठकर देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो ये हफ्ते थोड़ी सॉर्ट हो गई है. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइटर ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: मिर्ची फ्रेश माल.
5: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया.

इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
6: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
7: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
8: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
9: जबरदस्त ट्रैक्स।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हेलो तो तारण और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना राइट ऑन मिर्ची एंड इट्स टाइम कि हम यहाँ पर थोड़े सा कॉन्वर्सेशन टू वे करें, है ना। मतलब ये वो वक्त है जहाँ पर मैं गेम खेलती हूँ तो ऐसा लगता है कि स्टूडियो में मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पर सारे लोग आ गए हैं एंड देन एवरीवन इज गिविंग देयर आंसर्स। सो राइट हियर लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेलते हैं जहाँ सीन सुनाने वाली हूँ एंड आई थिंक सो इट्स क्वाइट एन ईजी सीन। थर्सडे है, मैंने सोचा एकदम ऐसे लाइट रखते हैं, दैट्स वाई। सो हियर इट गोस।
1: लाइट्स कैमरा Scene test. Scene
2: test. Oh shit! I'm submitting a good book. I have to go.
3: मैं pay करूँगी तुमको. तुम्हारा rate क्या है?
2: Ma'am, हमेशा बात ना पैसे की नहीं होती. This is not.
3: हमेशा ना बात पैसे की होती है. Okay. Now please.
0: Okay. Now you tell me कि ये कौन सी movie है? I think so. This is quite easy, right? 5001896 is my number. Messages आने हो गए हैं. शुरू ये हुई ना बात. चलिए अच्छी बात है. 5001896 is my WhatsApp नंबर, ठीक है। और अगला गाना तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए मोहम्मद फैज की आवाज में ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: देखा

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
2: नचिकेत सर आए, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय। आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी कि अरे वाह, यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते।
1: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
4: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback. Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
3: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
5: Kuch kuch hota hai Anjali.
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन।
10: इट्स हॉट। शायद दिल

0: वेल व्हाट अ सॉन्ग यार. मतलब वैसे ये गाने के साथ ना बहुत सारे फीलिंग्स जुड़े हुए हैं हमारे. ऑफ कोर्स 90s इंडी पॉप का गाना ओरिजिनली हमारे सोनू निगम की आवाज में, लेकिन कहीं ना कहीं ही हैज डन, यानी अरिजीत सिंह हैज डन अ फेयर जॉब. बट नहीं यार, मुझे नहीं अच्छा लगता है जनरली कि कोई आना छेड़खानी कर ले हमारे इन एपिक गानों के साथ में, है ना. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. आफरीन है आपके साथ. सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था यहाँ पर. थोड़ा सा मैंने आपको कंफ्यूज भी कर दिया है क्योंकि थोड़ा छोटा डायलॉग सुनाया था ना. वेल, जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं ना, तो बता दो यहाँ पर सीन सुनाया है मैंने एक मूवी का, एंड यू हैड टू गेस माई फ्रेंड्स विच मूवी इज दिस. हियर इट गोज.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट.
2: मींस कि मैं शायद नहीं जाऊंगी और अपनी शादी कैंसिल करके एंगेजमेंट तोड़ के मैं यही रह जाऊंगी, ये कह रहे हो तुम? हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं अरे मैं वो वाली औरत हुई नहीं जो अपने फियांसे को छोड़ के.
0: ओके, सो अब आप सोच रहे होंगे कि यार आफरीन ने थोड़ा सा सीन बदल लिया. वो इसलिए बदला कि यार आपको भी तो समझ में आए कौन सी मूवी है. सो अब जाके आंसर्स जो है और ज्यादा फ्लो इन कर रहे हैं 5000196, क्योंकि गलत जवाब वीर सारा कैसे सोच लिया आपने. वेल, कुमैल का मैसेज आया है यहाँ पर, सेजल का मैसेज आया है, देन आई हैव मोहम्मद यूसुफ खान मैसेजिंग मी, देन आई हैव वाज दिस सुलेमान मैसेजिंग मी, और अख्तर साहब और समायरा का मैसेज. सो लेट्स हियर व्हाट्स द राइट आंसर.
3: गुड मॉर्निंग.
0: हाँ जी, हाँ जी अख्तर.
3: मूवी इज जब हैरी मेट सेजल, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली, शाहरुख खान एंड अनुष्का शर्मा. थैंक यू.
0: Thank you so much for your answer. That is indeed the right answer. One of my favorite movies. वैसे मैं ना इम्तियाज अली की बहुत बड़ी फैन हूँ, ठीक है, एंड आई जनरली डोंट मिस एनी ऑफ हिज मूवीज. एंड ये मूवी मेरे ख्याल से बॉक्स ऑफिस पर इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही है फॉर सम वियर्ड रीजंस, बट यार इट हैड ऑल गुड थिंग्स इन दिस. शाहरुख खान थे, अनुष्का शर्मा थी, बहुत सिजलिंग केमिस्ट्री थी इनके बीच में. उसके अलावा दिस वॉज शॉट एट सच ब्यूटिफुल लोकेशंस इन यूरोप. और क्या चाहिए बताओ यार, मूवी अच्छा बनाने के लिए अच्छे गाने थे. जैसे ये अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज में जो मैं प्ले करने वाली हूँ, बस ज्यादा ही नहीं आप उम्मीद कर रहे हो बॉलीवुड से. कोई अच्छी मूवी है उसे चलाते नहीं हो, और जो अच्छी नहीं होती है उसे चढ़ा देते हो. सो वेल, आई लव दिस ट्रैक यार. सफर का ही था मैं, सफर का. व्हाट अ सॉन्ग यार. एंजॉय इट ऑन माय ट्रिप.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं। फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Energy.
1: Isca bana, usca bana, saca bana. Rabana. Burga, burga. La vie va la burga.
2: हेलो
3: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, हाँ मैं तो चल रही
3: हैं। हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं
2: 9:30-10 बजे तक। ये बताओ ना बचा जाएगा?
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: नहीं
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए। ये सुनिए, ये देखिए।
2: हेलो
3: हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहा है, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चढ़ रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मैं मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चढ़ेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चढ़ने वाले चढ़ाएंगे।
2: हेलो हेलो
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद का बजा रहा है ये?
3: विनीत मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर।
2: अरे कॉफिन
3: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मन मानिए।
2: अच्छा भैया आप मेरे यहाँ जाने वाले थे, बजाने वाले थे। कुकुडुकू
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है, फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12-14 अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026, कनेक्ट डिस्कवर और ग्रो।
5: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8 November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
6: नहीं! बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

That is Mohit Chauhan ki velvet si awaaz mein. What a beautiful romantic track right here on Mirchi. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग. और वीकेंड आ गया है, इट्स फर्स्ट ऑफ अक्टूबर. वंडरफुल, मतलब एक तारीख पर वीकेंड है. बहुत सही अलाइन होता है जहाँ पर वीकेंड पर थोड़ा सा आपको सोचने का और वक्त मिलता है कुछ और काम करने का. एंड एट दिस पॉइंट मेरे ख्याल से जिनकी फैमिलीज हैं बैक इन इंडिया एंड बैक इन देयर कंट्रीज, या फिर जस्ट यू हैव टू सेंड मनी, सो अब मैं ऐसा ख्याल आता है कि अरे अच्छा चलो वीकेंड है ये काम कर ही लेते हैं. और आप अगर ये काम आज करने वाले हैं तो यू डेफिनेटली नीड द एक्सचेंज रेट्स. वेल, जैसे आज का एक्सचेंज रेट कहता है, कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.29, वहीं जना पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.18, बांग्लादेशी टाका इज एट 33.77, वेर एज एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको श्रीलंकन रुपीज दैट इज 90.76 एंड नेपाली रुपीज इज एट 42.01. ये थे आज के एक्सचेंज रेट. घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां एंड वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स प्लेइंग फॉर यू नेक्स्ट झंकार बीच से केके की आवाज में. आई लव दिस सॉन्ग एंड आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा. वन मिर्ची, इट्स हॉट.

हेमा से देसाई की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। व्हाट अ पावर पैक्ड फन फिल्ड आवाज थी ना हेमा से देसाई की। एक चुलबुली सी आवाज और वो काजल का चुलबुलापन, इट एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर वेरी ब्यूटिफुली। वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग, आफरीन है आपके साथ ऑन दिस ब्यूटिफुल वीकेंड मॉर्निंग। मतलब थर्सडे को तो मैं वीकेंड में ही काउंट करती हूँ एंड आई डोंट काउंट इट एज अ वीक डे फॉर श्योर। मेरा पूरा जो थर्सडे मॉर्निंग से ही एनर्जी, इट्स लाइक चलो जितना मैं पूरा वीकेंड में ना फ्राइडे सैटरडे एंजॉय नहीं करती ना, मुझे उतना थर्सडे अच्छा लगता है। एंड टुडे इट एक्चुअली हैव अ वेरी पावर लाइक फुल्ली पैक्ड डे, क्योंकि ना मिर्ची की टीम भी जाने वाली है एक जगह पर, वो किधर मैं बताती हूँ थोड़ी देर में, नॉट नाउ। लेकिन अभी जो वक्त हुआ है मेरा, वो हुआ है मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स खोलने का। मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स, यस राइट। और मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में आज क्या होने वाला है, आज मल्टी स्टारर मूवी का एक मैं स्टार कास्ट सुनाने वाली हूँ आपको, एंड यू हैव टू गेस विच मूवी इज दिस, एज इजी पीजी एज दैट। अब मूवी है शाहरुख खान की, ठीक है। ये मूवी में है शाहरुख खान, ये मूवी में है दीपिका पादुकोण, ये मूवी में है जैकी श्रॉफ। इंटरेस्टिंग है ना, आई मीन सो मेनी मूवीज केव अप इन योर माइंड ना व्हेन आई सेड शाहरुख खान एंड दीपिका, बट दिस मूवी हैज जैकी श्रॉफ एज वेल एंड दिस मूवी हैज सोनू सूद एज वेल। ना यू गॉट थिंक विच मूवी एम आई टॉकिंग अबाउट, और भी लोग हैं इसमें बट आई डोंट वॉन्ट टू गिव अवे दोज नेम्स, क्योंकि फिर वो बहुत ईजी हो जाएगा। इतने लोग हैं, अब इतने लोगों में बताइए कौन सी मूवी है, वो कौन सी मूवी है जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जैकी श्रॉफ एंड सोनू सूद थे। Now I want the answers on 5001 8 9 6। WhatsApp कर सकते हो यहाँ पर आकर आप, या फिर voice message भेज सकते हो। I'm waiting for your answers. Meanwhile, hey hi. For some reason this song reminds me of Mumbai. Taxi number 9211 से ये गाना है यार। नॉन सामी की आवाज, नशीली आवाज में enjoy it on मिर्ची साथ।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi. It's hot.
1: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल. कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस.
2: आई डोंट हैव टू माउथ दोज.
3: सॉरी ब्रो, सॉरी.
2: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद. इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर. एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस.
1: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल के किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड.
2: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद. इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर. एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस.
1: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल के किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू. आप सुन रहे हैं मिर्ची,

0: and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
1: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
2: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
3: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
4: Yes, it was the best. I like the magic show.
5: Magic show, and you?
6: I also like the magic show very much.
7: It was so good.
8: It was very nice.
5: You liked it?
8: Yes.
5: We should come again?
8: Yes.
5: What's your name?
8: Aira.
5: And yours?
9: Anvita.
5: What was the best?
9: The magic show.
5: And you?
9: Magic show.
10: I like magic show.
5: Magic show. Jamshi uncle was great.
10: This recharge is so cool.
11: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
12: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
13: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
14: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
15: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: What a beautiful gana. Kumar Sanu ki awaaz mein, I think so. This is by far my favorite song Kumar Sanu ki awaaz mein. And well, ye gana hame hamare ek listener ne request kiya tha. Unka naam hai, let me check. Muazzam Thakur ne kaha tha ki chalo koi 90s ki Kumar Sanu ki melody baja dijiye. To humne socha chaliye ye hi kyun na ho.
1: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
0: हाँ जी, मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन तो आ गई है आपके साथ, लेकिन साथ में जवाब भी लेकर आई है, और वो क्या है? यस, मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स हम खेल रहे थे, जहाँ मैंने स्टार कास्ट सुनाया था, एंड मैंने बहुत ही आधा अधूरा सा स्टार कास्ट सुनाया था जानबूझकर, ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो, लेकिन स्मार्ट तो आप बहुत हो. तो मेरे ख्याल से हमें ना शाहरुख खान की सारी मूवीज रटी हुई है, सो ऐसे ही कुछ लग रहा है, क्योंकि मेरे आज स्टार कास्ट में थे शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, और मैंने कहा था जैकी श्रॉफ भी है इसमें, एंड एक और नाम दिया था सोनू सूद भी है, हालांकि मैंने दो चार नाम और नहीं दिए हैं ऑन पर्पस. सो वेल, कौन सी मूवी है ये तो मैं बताऊंगी ना, ये हमारे लिसनर्स ही बताएंगे. हेलो,
2: गुड मॉर्निंग आफ्टरनून.
0: वेरी गुड मॉर्निंग,
2: दिस इज राज.
0: हां राज,
2: मूवी नेम इज हैप्पी न्यू ईयर.
0: ओके,
2: रिलीज इन 2014.
0: ऑलराइट,
2: हैव अ गुड डे.
0: यू टू हैव अ ग्रेट डे यार. और हमारे साथ जुड़े हैं, हाय, गुड मॉर्निंग.
3: आई थिंक द मूवी नेम इज हैप्पी न्यू ईयर.
4: Hi Afreen, good morning.
0: Good morning.
4: The movie name is Happy New Year, directed by Farah Khan.
0: Bilkul.
4: This is Princeton here. Thank you and have a lovely weekend.
0: You Bye-bye. Too have a great weekend, Princeton. और बिल्कुल सही जवाब है, वैसे तुम्हारा Happy New Year ही है ये. और Happy New Year कहते हुए यहाँ पर मुख्तार अली, मोहम्मद यूसुफ खान, then I have who else here? वो लोग जो अपना नाम नहीं लिखते हैं, मुआज़िम ने भी यहाँ पर भेजा है. In fact, so well, that is the right answer. And playing the next track for you, Happy New Year. कौन सा गाना बजाऊं, मैं ये ने बहुत सोचा, और फिर मैंने सोचा चलिए आज आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर से मनवा लाके बजा दूं. चलिए ठीक है, एंजॉय दिस ट्रैक, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह की आवाज में, और मिर्ची इट्स हॉट.

0: Well, my bandhu, if you have a drone and you have that creative eye to shoot some great content in Qatar, लेकिन restrictions के वजह से या आप shoot नहीं कर पा रहे, then I think so आपके लिए कुछ दरवाजे अब खुल गए हैं. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. अगर आपके पास ड्रोन है या फोटोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन के लिए आप ड्रोन यूज करते हैं, कतर में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है. एंड प्लीज हेडलाइंस इनके नहीं यार. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और अगर आपके पास ड्रोन है या फोटोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन के लिए आप ड्रोन यूज करते हैं, देन कतर में एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है.
1: क्या खबर कतर?
0: वेल द खबर इज कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कोऑर्डिनेशन विद द जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी हैज अनाउंस दैट ड्रोन ऑपरेशंस आर नाउ परमिटेड इन डेजिग्नेटेड एरियाज अक्रॉस कतर. अब डेजिग्नेटेड एरियाज कौन से है ये गेसवर्क नहीं करना है आपको, ठीक है ना. मेट्रैश ऐप पर ऑथराइज्ड एरियाज आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं और टाइमिंग्स भी बिल्कुल फिक्स्ड है. उसी वक्त में आपको ड्रोन्स का इस्तेमाल करना है और वो है सनराइज टिल 9 AM, ठीक है, एंड देन अगेन फ्रॉम 2 PM अंटिल द सनसेट. बट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपको रिक्वायर्ड लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल्स फॉलो करने होंगे. सिर्फ ऑथोराइज जोन्स में ही ऑपरेट करना है और जिस पर्पस के लिए परमिशन मिली है ड्रोन उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए. कतर में ड्रोन यूज को रेगुलेट करने के लिए इस साल न्यू लेजिस्लेशन भी इंट्रोड्यूस हुई थी कवरिंग थिंग्स लाइक रजिस्ट्रेशन, परमिटेड एरियाज, फ्लाइट रूट्स एंड ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स. सो ड्रोन एंथुसियास्ट के लिए डेफिनेटली दिस इज अ गुड न्यूज. बस टेक ऑफ से पहले बैटरी के साथ अब मेट्रैश भी चेक कर लेना. बाकी तो स्काई खुला है आपके लिए, क्रिएटिविटी के एंगल्स भी सारे खुले हैं एंड वी वुड लव टू सी योर क्रिएटिविटी. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: लड़के।
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना क्या बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा
2: मिर्ची मुर्गा। हेलो
3: हाय, ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो
3: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार अपने मोबाइल से, कभी ये दबा रहे हैं कभी वो दबा रहे हैं, आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा।
2: तो वही मैं सुन रहा था, मतलब मिर्ची सारी लगा।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
6: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start and lockout assistance, plus flexible payments and 7% cashback.
7: Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
5: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
8: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important, but hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
9: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility, but responsibility deserves a little fun too.
8: This initiative is driven by GWM.
10: खट खट।
11: कौन है?
10: अज्जू।
11: अज्जू कौन?
10: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
11: खट खट, who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: वेल कमाल का गाना इस कमाल के शो पर यानी मिर्ची मॉर्निंग्स पर आपने सुना राइट हियर ऑन मिर्ची जुड़ गई है आपके साथ जी। और देखो एक जो फीलिंग है जो मुझे ऐसा लगता है एंड मेरे ख्याल से ये फीलिंग से बहुत सारे लोग सहमत होंगे कि कभी कभी ना एक कप कॉफ़ी और एक अच्छा सा गाना बस ना इतना ही काफ़ी होता है आपको अपने आप को दुनिया से थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट आई बहुत ज़्यादा ऑफन मैं करती हूँ ठंडी के मौसम में कि मैं जाती हूँ मीनापोर्ट वहाँ गाड़ी पार्क कर ली बिल्कुल वो दोहा स्काईलाइन की तरफ हाँ उसी तरफ फिर कॉफ़ी ले ली वहाँ से वहाँ छोटे कियोस्क है पता है ना आपको कॉफ़ी और चाय वगैरह के कॉफ़ी ले ली मेरा फेवरेट प्लेलिस्ट लगा ली और बस कोई एजेंडा नहीं कोई जल्दी नहीं मेरे दिन के ना एक डेढ़ घंटा कहाँ चले जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है लाइक आई एम एक्चुअली इन माई लिटिल जोन। और आज आफरीन ये कॉफ़ी और ये म्यूज़िक इस सब की बात क्यों कर रही है बिकॉज 1st of October इज इंटरनेशनल म्यूजिक डे इंटरनेशनल कॉफी डे। यस इंटरनेशनल म्यूजिक डे की अगर बात करें तो शुरुआत 1975 में हुई थी विद द आइडिया दैट म्यूजिक ब्रिंग्स पीपल एंड कल्चर्स टुगेदर एंड इंटरनेशनल कॉफी डे दुनिया भर में कॉफी के साथ साथ उन मिलियंस ऑफ पीपल को रिकॉग्नाइज करता है जिनकी लाइवलीहुड कॉफी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। बट यू नो व्हाट आई फाइंड द कॉम्बिनेशन वेरी इंटरेस्टिंग कॉफी जो है आपको एक पॉज दे देता है ना और म्यूजिक उस पॉज को एक फीलिंग दे देता है। अब जरूरी नहीं है इस फीलिंग के लिए आपको मीनापोर्ट तक जाना पड़े बालकनी हो कार हो ऑफिस से पहले की 10 मिनट हो या घर पहुंचने से पहले वो सुकून के 5-10 मिनट हो बस कॉफ़ी कैप कर लिया फ़ोन स्क्रोलिंग को बिल्कुल साइड में रख लिया और अपना फेवरेट गाना लगा लिया है ना आज करके देखो ना आप ये एंड इफ़ यू एक्चुअली डू दिस ना व्हाट्सअप करके मुझे बता देना 5000196 आज नहीं तो कल या फिर सोशल मीडिया पर आकर मुझे बता देना या टैग कर देना कि हाँ यार आफरीन ज़रूर नशा तो है इस कॉफ़ी में और हेडफोन्स लगा लिया या गाने सुन लिया आए हाय। तो बस गाने सुनाने का काम तो मैं यहाँ पर कर ही रही हूँ बस कॉफ़ी की कमी है आप वहाँ पर एक ग्रैब कर लो और मैं यहाँ पर आप भेज दो ना माइक से दिल तक आफरीन है राइट योर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
5: Need to send money home? Make it fast, make it safe, make it Alphadan Exchange.
6: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Alphadan Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453777.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: इस गाने में किस किस चीज की तारीफ करूं? इस खूबसूरत आवाज निकिता गांधी मोहित चौहान की तारीफ करूं या फिर इस खूबसूरत लिरिक्स की तारीफ करूं? अ वेरी अंडररेटेड सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जब हैरी मेट सेजल. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है ऑन दिस ब्यूटिफुल मॉर्निंग एंड वक्त हो चला है कि मैं अपनी डायरी से कुछ अल्फाज आपको सुनाऊं. और आज के जो अल्फाज हैं वो इस इमोशन पर है कि कभी सोचा है कि जिंदगी में ना सबको सब कुछ नहीं मिलता ना, कहीं कुछ मिल जाता है कहीं कुछ रह जाता है और शायद इसी का नाम जिंदगी है.
1: आफरीन की डायरी से शायरी.
0: तो अर्ज किया है कि सबको सब नहीं मिलता, किसी को सुकून मिलता है किसी को जुनून नहीं मिलता, किसी के नसीब में मोहब्बत उम्र भर होती है, किसी के नसीब में मोहब्बत उम्र भर होती है, किसी को चाहकर भी वो शख्स नहीं मिलता, कुछ ख्वाब ताबीर पाकर भी अधूरे रहते हैं. ताबीर यानी ख्वाब का हकीकत बन जाना. लेकिन कमाल देखिए, कभी ख्वाब पूरा होकर भी ना दिल में कुछ ऐसा अधूरा सा रह जाता है ना. तो बस कुछ ख्वाब ताबीर पाकर भी अधूरे रहते हैं, कुछ किस्से मुकम्मल होकर भी अधूरे रहते हैं, कुछ जख्म वक्त के साथ खामोश हो जाते हैं और कुछ नाम रूह में उतर कर उम्र भर याद आते हैं. क्या बात है, बस सबको सब नहीं मिलता. और दोस्तों शायद ना जो मिला है कभी कभी उसकी तरफ भी नजर कर लेनी चाहिए और शुक्र करना चाहिए. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट ऑन विच इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
3: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
2: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: हू देयर,
4: हुम आर यू,
5: हुम आर यू, हू,
4: अरे हुम आर यू लुकिंग फॉर मैडम?
5: खट खट, हू देयर,
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, मिर्ची इट्स हॉट।

चलिए दोस्त, एक नॉर्मल से डे को स्पेशल बनाने का फॉर्मूला बताती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए ना, हमारे घर में ऐसी कितनी चीजें होती है जो हम ना स्पेशल ओकेशंस के लिए रखते हैं, जैसे आपका वो एक स्पेशल ड्रेस है या फिर नॉर्मल सा एक डिनर सेट है, अच्छा वाला एक जो आपने सिर्फ अपने गेस्ट के लिए रखा हो, या फिर वो एक्सपेंसिव परफ्यूम हो सकता है जो आप ना सिर्फ स्पेशल ओकेशन के लिए बचा कर रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, कभी कभार हम चीज़ें इतना सेव करते हैं वो ओकेशंस का कि वेट थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो जाता। देखिए, एक नॉर्मल से दिन को थोड़ा सा अगर आपको स्पेशल करना है या अपने आप को एक फील गुड वाली फीलिंग देनी है कि नहीं यार, दिन को कुछ अच्छा सा एक अपग्रेड करते हैं, तो ये सारी चीजें जो आपने बचा के रखी है ना, वो स्पेशल ड्रेस ही क्यों ना हो, आपका फेवरेट वाला, या परफ्यूम लगा लिया, या वो चीज़ें जो आपको पसंद है, वो अच्छे वाले कॉफ़ी मग में जिसमें गेस्ट को आप कॉफ़ी देते हो वो लेकर बैठ लिया, तो बस देख लीजिए कहीं ना कहीं आपको ना अच्छा लगेगा। थोड़ी देर से के लिए क्यों ना सही, लेकिन कभी कभी अच्छी चीज़ यूज़ करने से नॉर्मल डे स्पेशल बन जाता है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। मेरी ड्यूटी फिलहाल होती है ख़त्म, मैं मिलूंगी जल्द ही। आप अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले इजाज़त है जाने की, टाटा बाय बाय, सायोनारा, हैव अ ग्रेट डे, और सुनते रहिएगा मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं। वो सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ?
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।

0: Arijit Singh and Palak Mitchell ki khoobsurat si awaaz, and what a lovely track it is from the film Rustam featuring Ileana D. Cruz and Akshay Kumar. And as gaane ke alfaaz ki baat karu jo sahi maayne mein puri tarah se dil pe utarte hain, bhai ek baar phir se kya kamaal ki lekhni by Manoj Mundasir. Waise ek baat batao, aaj ka din jo hai na kaafi kamaal hai is gaane ke saath is show ki shuruaat karne ke liye.
1: Mirchi Anshu.
0: वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची. एंड सबसे पहले मिर्ची के सभी लिसनर्स को बहुत सारी बातों की मुझे मुबारकबाद देनी है. देखिए, अगर आज के दिन को देखने की कोशिश करें तो आज से शुरू होता है एक नया महीना. बिल्कुल 1st of October इसने हमारी जिंदगी में दस्तक दे ही दी है, तो सबसे पहले इसकी आप सबको बहुत सारी बधाई. लेकिन इसके अलावा दूसरे रीजन को देखने की कोशिश करें तो जितने लोग हमें रेडियो में सुनते हैं, हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, देखो कारण और वजह तो कई हो सकती है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन अगर कोई है, सो दैट इज म्यूजिक, यानी कि गाने, संगीत. तो भाई आज के दिन को अगर आप और हम मिलकर सेलिब्रेट ना करें तो फिर किस दिन को करें? Because today we are celebrating World Music Day. देखिए, अगर म्यूजिक के मायने की मैं बात करूँ ना, तो हर किसी की जिंदगी में काफ़ी अलग अलग है. जब भी कोई शख्स किसी गाने को सुनता है तो शायद किसी को उसके अल्फाज बहुत पसंद आए, किसी और की बात करें तो ओवरऑल उसकी धुन, उसकी आवाज़, ये सब उसे बहुत पसंद आए. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाने को सिर्फ एंटरटेनमेंट के जरिए के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में एक असर छोड़ने वाले कोई तो मुहिम के तौर पर देखते हैं. एंड आई बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी. हर एक ओकेजन के लिए ना मेरा एक अलग प्लेलिस्ट है, लेकिन हाँ, कोई ना कोई ऐसा संगर जरूर है जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है. एंड फॉर मी, अगर मैं अपने ऑल टाइम फेवरेट सिंगर्स की बात करूं तो उस लिस्ट में अगर टॉप में कोई आते हैं तो वो हैं के, लकी अली एंड साथ ही अरिजीत सिंह. चलिए, चूंकि मैंने सिंगर्स की बात की है, म्यूजिक की तो बहुत बातें आ जाऊंगी, कुछ स्पेशल फैक्ट्स भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी. आपका सबसे फेवरेट सिंगर कौन सा है आज आप मुझे ये बताएं. 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल अभी फिलहाल मैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गाना फिर से आप तक पहुंचाती हूँ. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na wiatr bala burka.
1: Milci, burka. Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
2: Hello,
3: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
2: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
3: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
2: हाँ जी.
3: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
2: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
3: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे. तीन लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
2: मैंने अगर लगा रखा है मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करेगा.
3: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
2: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
3: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये
2: तो
3: जाना सनम.
2: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई है मेरे पास.
3: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप.
2: ठीक है, मैं क्या करूँ बताइए ना.
3: आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
2: है. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
3: आपके कारण से. हंसा मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
2: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
3: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
2: हाँ बताइए
3: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
2: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
3: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
2: यार आप लोग किसी दिन ना मतलब कुकड़ू को.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: हेलो शॉप्स, आ प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा.
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा.
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो.
8: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070-7687.

0: अभिजीत की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज यार, क्या प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म जोश। एंड इस गाने में अगर आपको कोई नजर आए तो वो है चंद्रचूर सिंह एंड साथ ही ऐश्वर्या राय बच्चन। चलिए जी, ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया अनु मलिक की कॉम्पोजिशन के साथ, लेकिन आज के दिन के बारे में कोई खास बात हो जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: वेल, आपसे कुछ देर पहले बताया कि आज का दिन जो है वो खास एंड स्पेशल एंड बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल म्यूजिक डे। लेकिन बात इतनी है कि आखिरकार आज का दिन इंटरनेशनल म्यूजिक डे के तौर पर सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं म्यूजिक जो है हम सभी सुनते हैं, कुछ गानों से प्यार करते हैं, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के दिन की शुरुआत हुई थी साल 1975 में, जब इंटरनेशनल म्यूजिक काउंसिल ने लेजेंडरी वायलिनिस्ट यानी कि यहूदी मिनहुनन के इनिशिएटिव पर पहला इंटरनेशनल म्यूजिक डे सेलिब्रेट किया। एन आइडिया जो था ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था, म्यूजिक को दुनिया के हर सेक्शन तक पहुंचाना और म्यूजिक के थ्रू लोगों को एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब लाना। क्योंकि शायद चाहे लैंग्वेज जो है ये अलग हो सकती है, कंट्री अलग हो सकती है, कल्चर भी अलग हो सकते हैं, लेकिन म्यूजिक का जो ट्रांसलेशन है भाई साहब, ये जरूरी नहीं कि हर एक कंट्री के पैमाने में ये बंध के रह जाए। तो जब भी कोई गाना आपको इंस्टेंटली खुश कर देना, तो इतना समझ जाना कि ये गाने को बनाने के पीछे न जाने कितनी चीजें लगी हैं। किसी ने उसके अल्फाज लिखे, किसी ने म्यूजिक को कंपोज किया, एंड कंपोजिशन के वक्त न जाने कितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पूरी तरह से मास्टरी हासिल की गई, एंड किसी की खूबसूरत सी आवाज ने जब उसमें जादू बिखेरा, तो ऑन स्क्रीन जब ये गाना में बहुत पसंद आया तो शायद किन्हीं किरदारों ने इस गाने में चार चांद लगा दिया। चलिए, अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं कि आपका सबसे फेवरेट ट्रैक कौन सा है, कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे प्ले कर सकूं, लेकिन हाँ, कंडीशन इतनी है कि 2000 के बाद का गाना हो, क्योंकि मैं बहुत पुराने गाने इस शो में प्ले नहीं कर सकती। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, मीनवाइल अलका याग्निक एंड हरियरंजी की आवाज में एक बेहद ही प्यारा सा गाना मैं आप तक पहुंचाती हूँ। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: खटखट
6: कौन है?
5: दवे।
6: दवे कौन?
5: द वे यू लव मी। आई हाय मर जावा।
6: खटखट हु दैट?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: पता नहीं।
1: वह सचिन जिगर की क्या खूबसूरत सी कॉम्पोजिशन, अरिजीत सिंह की आवाज़ एंड फिल्म का नाम मुंजिया। एंड इस फिल्म में एक बार फिर से बहुत खूबसूरत तरह से अगर हमें कोई नजर आई तो वो है शर्वरी, जो नेशनल क्रश बनने की कगार पर पहुंच चुकी हैं, साथ ही अभय वर्मा। अविंग सिद्धार्थ, इस वक्त अगर कतर के क्रश की बात करूँ तो काफी क्रश होकर जो बनकर आया है, हमारे दिलों को क्रश करने की कोशिश कर ही रहा है। यार सचकहूं, अगर मैं अपने लाइफ की सबसे एक्साइटिंग फेसेस को याद करने की कोशिश करूं तो सीधा मेरी मेमोरी अगर मुझे कहीं लेकर जाती है तो वो है स्कूल टाइम्स, जहाँ पे फ्रेंड्स के साथ ना जाने हमने कितनी मस्ती की है, टीचर्स की वो डांट सुनना, घर वालों की डांट पड़ना, लेकिन किसी बात का हम पे कोई असर ना होना। लेकिन उस पे भी सबसे खास बात कुछ होती थी तो स्कूल खत्म होने का वो इंतजार कि हर दिन जैसे ही छुट्टी हो हम सब की सब जो है ना अपनी पलटन को लेकर उस ठेले वाले भैया के पास पहुंचे, जहाँ पे फटाफट से हमने पानी पूरी खाई। एंड पानी पूरी खाने के बाद हर दिन की रूटीन अगर कोई थी तो बस यही कि वो जो 1 रुपए की कैंडी मिलती थी, यानी कि आइसक्रीम मिलती थी, भाई हर दिन वो खाना है एंड जरूर खाना है। मेरी सबसे फेवरेट हुआ करती थी ऑरेंज कैंडी, आई स्टिल रिमेम्बर। मतलब आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है यार जिसने हमारी जिंदगी को ना बहुत खूबसूरत तरह से फ्रेज करने का काम किया है, अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग आइडियाज एंड थॉट्स। लेकिन आज की जनरेशन को देखने की कोशिश करें भाई, 1 रुपए छोड़ 10 रियाल में भी ये लोग जो है संतुष्ट ना हो। चलिए, अगर आपको भी लगता है कि आपके आइसक्रीम की कहानी मेरी दास्तान से मिलती है तो वर्ल्ड की बेस्ट आइसक्रीम ब्रांड्स को हेड टू हेड आते देखने का वक्त हो चला है, क्योंकि ये इस वक्त हो रहा है मॉल ऑफ कतर के ओएसिस स्टेज में, जहां पे चल रहा है इंटरनेशनल आइसक्रीम शो एंड दिस इज गोना रन अंटिल 3rd of October। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बहुत सारे अमेजिंग एक्टिवेशंस हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं एंड आइसक्रीम का भरमार है, तो जाओ। मैं तो कहती हूँ डिनर की प्लानिंग होगी, अब की बार जो पेट भरना है वो आइसक्रीम से ही भरना है इस वीकेंड। चलिए, मॉल ऑफ कतर अंडर 3rd of October, ओएसिस स्टेज इंटरनेशनल आइसक्रीम शो कर रहा है आपका इंतजार। मीनवाइल अदनान सामी की आवाज़ में अगला गाना भी आप ही के इंतजार में, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
3: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे. That used to be the spot in my school.
4: Toilet?
3: हाँ.
4: School था, कंजर खाना खुला हुआ था.
3: तो दोनों.
2: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा. नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट.

मंजूष प्राण परम्परा की खूबसूरत सी आवाज, फिल्म का नाम बागी 4। दिल खोल के सच तरह से एक बात पक्का कह सकती हूँ कि ये गाना ऐसा है इस फिल्म का जिसने किसी तरह से कोई बागीपन जो है ना इस फिल्म के साथ ना किया। अगर इस पूरी के पूरे फिल्म की बात करूँ यार, फिल्म अच्छी है, किरदारों ने बड़ा कमाल का काम किया।

मजोश प्राण परम्परा की एक खूबसूरत सी आवाज, फिल्म का नाम बागी 4। दिल खोल के सच तरह से एक बात पक्का कह सकती हूँ कि ये गाना ऐसा है इस फिल्म का जिसने किसी तरह से कोई बागीपन जो है ना इस फिल्म के साथ ना किया। अगर इस पूरी के पूरे फिल्म की बात

0: इंक्रीमेंट कब कब खुशी देता है अगर बॉस इंक्रीमेंट करे जो कि चैप्टर जिंदगी से हट चुका है, कोई बात नहीं, नेचुरल इंक्रीमेंट ऑर्गेनिकली हो ही रहा है, एक्सचेंज का रेट बढ़ता रहा है, बड़ी खुशी होती है। लेकिन अगर प्राइसेस ड्रॉप होने की बात करें तो पता चल जाए भाई साहब पेट्रोल या डीजल के प्राइस जो है वो जरा कम हुए हैं, खुशी देखो अपरंपार खुशी। चलिए जी नया महीना है, ऐसी कोई खुशी क्यों ना आपकी जिंदगी में मैं आज ले ही आऊं।
1: What is the price of fuel, you beauty fuel?
0: All right, so fuel all update. The beautiful people who are connected with me right now, इतना बता दूँ इस वक्त अगर आप आज प्रीमियम गैसोलीन की बात करें सो इट प्राइस एट कतरी रियाल्स 1.95 एंड अगर मैं सुपर गैसोलीन की बात करूँ सो इट प्राइस एट कतरी रियाल्स 2.10 पर लीटर एंड यही अगर हम डीजल की बात करें सो इट प्राइस एट कतरी रियाल्स 2.05 पर लीटर। लेकिन बात इतनी है कि भैया जो प्रीमियम कैटेगरी है ये हुई है कम, लेकिन वही अगर हम सुपर की बात करें डीजल की बात करें तो उन्होंने ठाना है भाई हिलने डुलने का मन नहीं करा, हम जहां टिके हुए थे वहीं टिके रहेंगे, सितंबर से इनका प्राइस जो है वो मैच होता है। आप बताएं आप अपनी गड्डी को चला के आज वीकेंड में कहां निकलने की तैयारी कर रहे हैं? 5000 1896 वेटिंग फॉर योर वीकेंड प्लान्स। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कथर या मिर्ची अंशु। मीनवाइल नवराज हंस एंड हर्षदीप कौर की आवाज में ये अगला खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द फिल्म एक लड़की को देखा राइट फॉर यू एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
2: ओ छंडो जी।

मतलब अरमान मलिक की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़. मतलब इतने दिनों के बाद फाइनली जब अरमान मलिक की आवाज़ सुनाई दी ना भाई, सब दिल को ना सुकून मिला. मिर्ची अंशु वैसे सुकून की अगर मैं बात करूँ तो ये तो मेरी जिंदगी में तब तब भी जरूर आता है जब हाय ये एक प्याली जो है ना मेरी नजरों के सामने आए. बल जितने भी कॉफी लवर्स इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैं आपको बता दूं आज का दिन बस आपका ही है पूरी तरह से, बिकॉज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल कॉफी डे. सो मैनी कंग्रेचुलेशंस. एक और रीजन मिला, अरे कोई रोके तो हम ये कह सके अरे आज तो इंटरनेशनल कॉफी डे है, आज आपका रोकने का बिल्कुल भी कोई सवाल उठता ही नहीं. और रोज भी रोकने का सवाल नहीं उठता क्योंकि हमारे लिए हर दिन ही इंटरनेशनल कॉफी डे. अच्छा एक बात बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी दिन की शुरुआत ही कॉफी के साथ होती है? आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. 5000 1896 5000 1896, जहां पर आप मुझे ये बताएंगे. कॉफी लवर्स, आपके लिए एक चैलेंज भी है. आपने मुझे इस वक्त कॉफ़ी के चार डिफरेंट फ्लेवर का नाम बताना है उनके एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन के साथ. वैसे तो हमने जो कह दिया हमारे लिए वही सही प्रोनंसिएशन है, बट भाई कॉफ़ी और उसके नाम मैंने पीना इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि पता नहीं नाम ले पाऊँ या ना ले पाऊँ. सो 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. फटाफट से अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर मुझे कॉफ़ी के चार डिफरेंट फ्लेवर्स का नाम भेजें. आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. मीनवाइल जावेद अली इरफान अंसारी की आवाज में अगला गाना आपके लिए, एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Gambana.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: हाँ जी बोलिए
3: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
4: आप बोलिए ना
3: कॉल आपने किया आप बोलिए
4: कॉल मैंने किया है हेलो
3: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
4: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
3: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
4: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
3: नींद में है क्या
4: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
3: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
4: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
3: तेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
4: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
3: हेलो
4: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
3: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
4: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
3: फोन नहीं कर रहा अभी
4: आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
3: चप्पल
4: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
3: क्यों आराम कर दिया तुम जैसे
4: जीना बता रहा यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना तो बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
3: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
4: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: खटखट
7: हू दैट
6: जाहिर
7: जाहिर जाहिर हूँ
6: जाहिर सी बात है मैं ही हूँ और कोई नहीं
7: खटखट हू दैट
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

0: Well, Shreya Ghoshal and Vishal Bharadwaj ki khubsurat si awaz and what a soulful track it is from the film Omkara. Ye gaana to maine aapko suna diya, lekin saathi ki baat kare to is waqt hamare radio wale saathi aa chuke hain. Zara unka bhi welcome karte hain, lekin karega kaun?
1: Mirchi Anshu.
0: अरे हम बात करें हमारे मस्त मौला गौरव की. गौरव, वेलकम टू मीठी मिर्ची.
2: अरे थैंक यू जी, थैंक यू. और क्या दिन है आज, बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है. तुमने आपसे थोड़ी देर पहले जब कॉफी के बारे में इतनी बातें करनी शुरू की तो मैंने बोला आज तो अंशु के शो पे जाना बनता है. भाई कॉफी के फैन
0: आज
2: है.
0: आज गौरव का टेस्ट है. हर दिन इतनी कॉफी पीते हैं ना, मतलब ऑफिस में आके पूरी कॉफी खत्म करने का काम इसी का रहता है. चलो तुम ब्लैक कॉफी तो काफी पीते हो मुझे मालूम है, लेकिन अब ना मैं तुम्हारे आगे एक पोस्टर पेश करने वाली हूँ जिसमें बहुत सारी कॉफी के फ्लेवर्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे डिफरेंट रीजन के. देखते हैं क्या आप इनको सही सनी प्रोनाउंस कर पाते हो क्या. Here we go.
2: सबसे पहले एक्सप्रेसो, अमेरिकानो, कैपुचिनो, लाटे.
0: अरे ये दिल जीत लिया आपने.
2: मैचियाटो. इसके अलावा कोटाडो, फ्लैट व्हाइट, अफोगाटो मुझे बहुत पसंद है. आजकल मैं एकदम नया नया टेस्ट आया आइस कॉफी के अलावा कोल्ड ब्रू एंड वियना कॉफी. इसके अलावा गोल्डन लाटे एंड माचा लाटे जो कि
0: एक
2: छूट रहा है.
0: हाँ, एक छूट रहा है जिसका जन्म कोविड में हुआ था.
2: हाँ?
0: जिसका जन्म कोविड में हुआ था.
2: तुमको कैसे कोना छोड़ सकते भैया. डालगोना कॉफी का मैं बस इतना ही बताऊंगा. दे धनादन, हर कोई रील, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा था यार. डालगोना कॉफी पूरे कोविड में एक नए तरह का क्या था,
0: वायरस बन गया था जो कोविड के साथ आया और कोविड के साथ चला भी गया. मतलब आप में से कोई ऐसे हैं जो आज भी डालगोना का ट्रेंड अपने घर पे कायम रखे हुए हैं? आपके घर पे आज भी बनती है? हमारे घर से तो घूम गई है भाई,
2: मतलब भाई जितना देर में आटा गुन जाए उतनी देर में लोग खाली कॉफी को फेंटते रहते थे. एंड डालगोना कॉफी तुमको सच में बहुत याद की आज यार. सच में
0: सच आज न जाने कितने घरों में बनने वाली. अगर बनाने वाली तो थम्स अप भेजना 5000186. वी विल गेट कनेक्टेड देयर. मीनवाइल आने जाने का सिलसिला भी चलता रहेगा. स्टेडियम टू मर्जी. इट्स हॉट. बंदी का नाम अंशु.

0: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
1: and earn Qatar Airways Avios today.
0: Visit our branches or download the app now.
2: Yeah, sir, festivities itni kareeb ho and us waqt aap apne ghar walon ko khush na kare to phir kise hi kare?
3: मिर्ची अंशु
2: यार, अगर मैं अपने बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करूं तो हमारे घर ना एक परमानेंट सा मोड था सेविंग्स का जो अपनाया जाता था. मतलब पापा ने हमेशा यही सीखा है दादाजी से, जो ने इवेंचुअली हमें भी ये सिखाया है कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें या सेविंग्स करें ना, तो वो एक तौर तरीका नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप कैश की सेविंग करते हैं. आज के डेट पे तो बहुत सारे पैमाने आ गए ना, FDs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, क्या कुछ नहीं है. लेकिन उसके अलावा कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ज़मीन हो गई, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है आपको लेके रखनी चाहिए. एंड अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गोल्ड जो है भाई साहब, ये सदियों से चला आ रहा है. एंड ये बात आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सोना ने कभी हमें खफा नहीं किया. एज इन जितने लोगों ने भी सोने में इन्वेस्ट किया है, खरीदी की है, परचेसिंग की है, भाई ये जो है ना, आप ग्राफ देख लें, हमेशा मुनाफे पे रहें, सबसे ज़्यादा मुनाफे पे रहें. तो क्यों ना एक बार फिर से सोने की परचेसिंग ज़रा कर ही जाए.
4: गोल्ड अपडेट.
2: वेल, अगर आज आप गोल्ड परचेसिंग का प्लान बना रहे हैं तो जरा देखें कि अल फरदान एक्सचेंज में क्या ही रेट्स आपको मिलने वाले हैं. अगर मैं बात करूं पैम्प 1 ग्राम गोल्ड ईडी फॉर्चुना बार की, सो इट इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 566. वहीं अगर हम बात करें 5 ग्राम्स की, सो इट इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 2650. अगर मैं 10 ग्राम्स की बात करूं, सो इट इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 5228. लेकिन अगर मैं 1 ounce की बात करूं, सो इट इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 16160. वहीं 10 तोले की बात करें, सो इट इज प्राइस्ड एट कतरी 59,990. तो जाएं जी, फेस्टिविटीज का मौका बस आने वाला है, क्यों ना घर पे जरा सोना चांदी ले ही आए. अभी फिलहाल मेरा मन जो है कहीं भाग रहा है, लेकिन उसके पहले
0: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतार. बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम गोल्ड बार्स
1: एंड अर्न कतार एयरवेज एवियोस टुडे.
0: विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ.
2: सुनिधि चौहान की आवाज में अगला गाना आपके लिए, एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अर्शद वारसे, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
3: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए।
4: वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है।
5: पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
6: चार फिल्में, उनकी दो, एक सीरीज, एक फिल्म। मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
2: राजकुमार हिरानी, मैं एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोलडा। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोलडा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: भट्ट
8: भट्ट, अरे भट्ट हूँ।
7: भट भट भट भट भट भट भट, बाइक बहुत आवाज करती है।
8: खट खट, हु दैट?
1: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

Well, Arijit Singh ki khoobsurat si awaaz and what a lovely track it is from the film Ye Jawani Hai Diwani. And somehow ye gaana jo hai na, main kuch is tarah se isse relate kar paati hu, jaise kahin na kahin ye meri zindagi ki kahani jo hai wo bayan kar raha ho. Mirchi Anshu. यार इसीलिए तो मैंने कहा था कि गाने जो है हमारी ज़िंदगी में बड़ा कमाल का रोल प्ले करते हैं. यू नो, कुछ गाने जो हैं आप उनसे रिलेट कर पाते हैं, कुछ गाने आपको कुछ बातों की याद दिलाते हैं, कुछ गाने कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के अलावा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन का जरिया बन ही जाते हैं. म्यूज़िक इसीलिए एक थेरेपी से कम नहीं है. टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल म्यूज़िक डे. चलिए जी, म्यूज़िक की बात तो आज बहुत हुई, आज ना मैं आपसे कुछ और भी बात करना चाहती हूँ. यार हमने सुना है ना कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, हम जो है कहीं ना कहीं सही मायने में बड़े होते जाते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ बदलने लगती हैं और धीरे धीरे हम इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होना शायद कहीं भूल जाते हैं. लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, अपने अंदर के उस बच्चे को कभी बड़ा मत होना देना. वही बच्चा जो बिना वजह शायद हंस सके, वो छोटी सी बात में कोई ना कोई एक्साइटमेंट को ढूंढ सके, जो गिरकर भी यही सोचे यार कोई बात नहीं एक बार और कोशिश तो बनती है, जिसके पास ख्वाहिशें उम्मीदें एंड कुछ नया पाने की चाहत है. क्योंकि बात इतनी है ना यार कि जिस दिन हमारे अंदर का वो बच्चा चुप हो गया ना, शायद जिंदगी क्यों ना चलती ही रहे लेकिन उसकी चमक जो है ना वो कहीं ना कहीं धुंधली सी लगने लगेगी. तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि उम्र को भले ही बढ़ने दीजिए लेकिन दिल की उम्र जो है ना उसे वहीं रोक दीजिए. एंड इस पे कुछ लिखा है, सुनाती हूँ. उम्र ने कहा अब जरा समझदार हो जाओ, लेकिन दिल ने कहा पहले कुछ ख्वाब तो सजाओ, बड़े होने की जल्दी में ये बचपन कहीं खो ना जाए, जिंदगी मिले जब भी हंसकर बच्चों से जरा खुल के मुस्कुराओ. अगर बात में है दम तो एक थम्स अप बनता है. वेटिंग फॉर योर मैसेजेस 5000 1896. लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम @MirchiOneKataria @MirchiAnshu. एंड आपकी जिंदगी में इतनी सी मुस्कान जरा मैं भी ले आऊं इस गाने के जरिए. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: Well, what a lovely track it is. Mohit Chauhan ki khubsurat se awaaz. And I'm in absolute love with this track. Ye gaana to maine aapko suna diya. Lekin ab aapke kaam aur pate ki baat bhi aap tak pahuncha doon.
1: मिर्ची अंशु
0: जरा सोचो जिंदगी में से सुख शांति चैन का पूरी तरह से आप पैमाना ना कहें या पैगाम ना कहें तो क्या कहेंगे जब ये बात पता चल जाएगी भाई साहब सैलरी जो है फाइनली अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है जो काम बॉस ने नहीं किया वो ऑर्गेनिकली अच्छे एक्सचेंज रेट्स ने कर दिया मेरी लाइफ की दास्ता जो है इस वक्त कुछ ऐसी ही है इंक्रीमेंट की अगर मैं दास्ता बताने की कोशिश करूँ तो अच्छे एक्सचेंज रेट के चलते ये हो रहा है एंड जरूर हो रहा है जरा देखें आज आईपी मनी में पैसे का क्या बोलबाला है Well, बॉस की जरा बुराई की तो तारीफ भी कर दूं भैया आप लोगों की बदौलत मेरी सैलरी आती जाती रहती है इसी तरह से सुनते रहें मेरे बॉस दुनिया के सबसे अच्छे बॉस है सुन रहे हैं इस वक्त Having said that, अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वन रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.31 कल से आंकड़ा थोड़ा और बढ़ता हुआ इसके साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.18 बांग्लादेशी टका 33.77 नेपाली रुपीज 42.04 एंड लंकन रुपीज 90.71 तो बस घर भेजे पैसे ढेर सारी खुशियां लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए एक ही काम करना है टिक के बने रहना है सुनते रहना है कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मैट्री इट्स हॉट एंजॉय

0: Milchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Milchi, murga.
2: हेलो
3: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चढ़ रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चढ़ेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चढ़ने वाले चढ़ाएंगे।
2: हेलो हेलो।
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद का बजा रहा है ये?
3: मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन करो, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप मुर्गा बन मानिए।
2: अच्छा भैया आप मेरे यहाँ जाने वाले थे, बजाने वाले थे।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
6: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
7: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन, लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
8: यस इट वाज द बेस्ट, आई लाइक द मैजिक शो।
9: मैजिक शो एंड यू?
10: आई आल्सो लाइक द मैजिक शो वेरी मच, इट वाज सो गुड, इट वाज वेरी नाइस।
9: यू लाइक्ड इट?
10: यस।
9: वी शुड कम अगेन?
10: यस।
9: व्हाट्स योर नेम?
10: आयरा।
9: एंड योर्स?
10: अनविता।
9: व्हाट वाज द बेस्ट?
10: द मैजिक शो।
9: एंड यू?
10: मैजिक शो। I like magic show.
9: Magic show. Jamshi uncle was great.
10: This recharge is so cool.
11: Ja Simran, ja jeere apni zindagi. Ja beta, ja.
12: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
13: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
14: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: शंकर महादेवन की पावर पैक आवाज, सुनिधि चौहान का साथ, एंड व्हाट अ तगड़ा पावर पैक गाना दिस इज। मतलब ये गाना सुनायन भाई साहब, आपने प्रियंका चोपड़ा को याद ना किया, दोस्ताना फिल्म को याद ना किया, सच कह रही हूँ, लानत है। मिर्ची अंशु। अब इस गाने से कोई तो दास्तान है जो छुपी हुई है, मतलब मेरी जिंदगी की कहानी है जो मैं आपके बीच पेश करना चाहूंगी। पता है क्या हुआ, ये था कि जब मैं मुंबई में थी 2 साल, सो आई वॉज परसुइंग माई कोर्स इन पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन इन दैट आई वॉज इन जेवियर्स मुंबई। अगर मैं उस जगह की बात करूं भाई साहब, मुंबई की बंदियां, मतलब जितने भी मुंबई के लोग इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये आप लोग का क्लास स्टैंडर्ड लेवल जो है ना वो काफ़ी अलग होता है। नहीं, हम ये सब क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि हम आते हैं छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी जगह से जिसका नाम है राजनांदगांव। बाद में इवेंचुअली मैं रायपुर मूव हुई, तो जेन्युइनली जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मुझे उसी नज़रों से, निगाहों से देखा गया था, भैया स्मॉल टाउन गर्ल है ना, छोटी सी बंदी आई हुई है। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में अपनी पढ़ाई लिखाई से काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर किए एंड कहीं ना कहीं लेवल जो है वो मैच हो ही गया। फाइनली बहुत सारी चीज़ें होने के बाद एक बात तो समझ में आ गई, काफ़ी सारे लोग बाहर से भी वहाँ पढ़ने आए थे, मुंबईकर्स का अपना एक अलग रुतबा चलता था, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जिसके अंदर भैया अपने देश की खुशबू आए ना, वो महक आए, वो देसीपन आए, सही मायने में लोगों का दिल जो है ना वही जीत पाता है। एंड आज की डेट में आप मुंबई जाएं तो ये बात महसूस होगी कि कहीं ना कहीं मुंबई के लोग इसीलिए दिल को इतने भाते हैं क्योंकि पूरी तरह से देसी हैं। मतलब कहते हैं ना, मुंबई जाना है भैया, माया नगरी एक ऐसी जगह है जो आपके सपनों को साकार करती है, तो देश के किसी भी कोने से आप क्यों नहीं आते, जब वहाँ जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी को दिल खोल के जी पाएंगे, जैसे ये आपके छोटे से गांव की लड़की ने वहाँ पे सबका दिल जीता। चलिए जी, इसी बात के साथ दिलजीत दोसांझ की आवाज़ यानी अगला गाना आप तक पहुँचाते हैं फ्रॉम द फिल्म मन मर्जियाँ। एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।
1: कभी उस

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: खट खट
6: अगर कर
7: अगर कर हूँ
5: अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे।
7: खट खट हू दैट
4: Only on 89.6 Mirchi 1.
8: Mirchi, it's hot.

0: लगता है सचदेव एंड तुलसी कुमार की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज यार, क्या प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म कबीर सिंह। ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन हम सब के लिए, पूरे के पूरे कतर के वासियों के लिए एक प्राउड मोमेंट, वो खबर भी आप तक पहुंचा दी जाए।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखिए, अगर वुमेन पावर की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, ऐसी शख्सियत की बात करें, लिटरली जिन्होंने सामने से आकर ना ही सिर्फ एक कंट्री को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक एंटिटी को लीड किया है, बल्कि सही मायने में डिफरेंस भी क्रिएट किया है। और ऐसे एग्जांपल्स की बात करें तो इस वक्त अगर मेरी जुबान से सबसे पहला नाम किसी का निकलता है तो वो है हर हाइनेस शेखा मोजा बिन नासिर। एंड ये बात आखिरकार मैं इस वक्त क्यों कह रही हूँ, एक बार बताती हूँ आपको। आप एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, कतर में स्पोर्ट्स को आगे ले जाने की बात करें, या ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात करें, आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कहानी कितनी खूबसूरत तरह से कतर में अगर किसी ने लिखी है तो वो है शेखा मोजा ने। एंड बस उनके बहुत अच्छे काम को दिल से रिकोगनाइज करते हुए इस वक्त उन्हें अवार्ड किया गया है एक ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री से बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका। एंड दे हैव रिकोगनाइज हर लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार। आई एम प्री श्योर शेखा मोजा की अगर हम बात करें तो भाई उनके हैट में ना जाने कितने ऐसे फेदर्स हैं जो पहले से लगे हुए हैं, लेकिन एक और एडिशनल फेदर हम सब के लिए इंस्पिरेशन मोटिवेशन के तौर पे ये मैसेज कन्वे करता है कि जिंदगी में अगर सोचना छोड़कर हम सही मायने में कदम आगे बढ़ाएं एंड चेंज की ओर एक मुहिम चलाएं तो ऐसा कोई काम नहीं जो हम हासिल नहीं कर सकते। एंड शेखा मोजा हैज सेट द एग्जाम्पल फॉर ऑल वुमेन हु आर कनेक्टेड विथ मी एट द मोमेंट। एंड अगर आपके घर में महिलाएं तो उनको भी आप इतना सहारा दें कि वो जिंदगी में बहुत अच्छा काम कर सके। चलिए जी, केके की आवाज में एक अगला गाना मैं आपके बीच पेश करती हूँ। मीनवाइल यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal. Only on Mirchi. It's hot. हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
1: नचिकेता राय, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय. आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह, यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी. तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते.
0: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal. Only on Mirchi. It's hot.
2: Dosti kai kusule madam. No sorry, no thank you.
3: Bhai saab, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए.
4: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
5: खूब मिलेगा. मिलेगा.
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Well, Neeti Sridhar ki power pack awaaz mein bada khoobsurat gaana. It is the title track of film Tum Mile. And agar aaj ke din mein kisi ke milne ki baat karu, to finally meri mulaqat jo hai, bahut kuch kamaal cheez se hui, ya yun kahun din se hui hai.
1: Mirchi Anshu.
0: अजी नए महीने की शुरुआत करें, साथ में वीकेंड को वेलकम करें, इससे सॉलिड एंड गजब कॉम्बिनेशन कुछ हो सकता है. तभी तो मैंने कहा तुम क्या मिले. फाइनली वीकेंड हमारी जिंदगी में क्या आया, खुशी की बहार जो है वो आ ही गई है. यार मैं तो कहती हूँ कि ऐसा कुछ आलम हो, ऐसा कुछ नजारा सेट हो जाए भाई साहब की हफ्ते में वीकेंड दो बार आए. नहीं, बाकी बीच में जो एक आध दो दिन रहेंगे काम कर लें. इनफैक्ट कई कंट्रीज तो ऐसी हैं, मिडिल ईस्ट में भी कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे अब हफ्ते के चार दिन का वर्क कल्चर सेट हो गया है. ऐसी बातें जो है ना, मैं दिल खोल के ओपनली और क्या करती हूँ, क्या पता मेरी बात सुनकर कहीं कोई दूर बैठा हुआ इंस्पायर मोटिवेट हो जाए और हमारी जिंदगी में भी ऐसा कोई आलम आ जाए. नहीं यार, लेकिन मेरा काम जो है ये काफी इंटरेस्टिंग, काफी एक्साइटिंग है क्योंकि मुझे स्टूडियो में बैठ के बात करने का मौका मिलता है. जरा सोचो, आई एम अ वुमन एंड आई गेट पेड फॉर टॉकिंग. समझ सकते हैं आप मेरी जिंदगी का पर्क है और कितना बड़ा है. चलिए जी, लेकिन अभी फिलहाल ये बात करने के सिलसिले को मैं अपनी जिंदगी में दूं विराम क्योंकि भूख लगी, कहीं और दिमाग और इंसान को खुद को यूटिलाइज करना है. मुलाकात होगी आप सैटरडे को बेस्ट ऑफ द वीक के साथ, संडे को करेंगे एक नई शुरुआत. अभी आप जो है वीकेंड को करें सॉलिड तरह से एंजॉय एंड अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताएं, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट होकर, वादा करें. अरमान मलिक की आवाज़ में जाने से पहले अगला गाना आपके लिए, एंजॉय. मा सलामा हबीबी.

0: नए जमाने के सीरियल्स हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो ड्रामास बाबू मोशाय, जो आज के डेट में एक नया वेव लेकर आ गए हैं इंटरनेट पे। वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हो लाइक डॉली सिंह, जिन्होंने काफी टाइम पहले से इन माइक्रो ड्रामास की शुरुआत की अपने पेज पे, या फिर रिसेंटली कुशा कपिला लेकर आए शीबा चड्ढा के साथ लिखे जो खत तुझे। सो या इन अ वे माइक्रो ड्रामास जो है वो एक साथ फेमिलियर फेसेस को लेकर आ रहे हैं हु बिलोंग टू फिल्म फ्रेटर्निटी, टेलीविजन एंड क्रिएटर्स इकोसिस्टम। एंड दिस डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ ट्रीट, क्योंकि भाई हर तरफ का टैलेंट जब एक साथ मिल जाए तो क्या ही कमाल होगा, वो तो हम देखते ही आ रहे हैं। और अब जब माइक्रो ड्रामास की बात कर ही रही हूँ तो आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो फेवरेट टीवी सीरियल्स हुआ करते थे ना, वो भी अब 90 सेकंड एपिसोड्स के रूप में देखने को मिल सकते हैं। यस, सीरियल्स लाइक एजेंट राघव, फियर फाइल्स, जय संतोषी माँ, ये सब अडेप्ट हो रहे हैं फॉर वर्टिकल वीडियो जनरेशन बाय रीपैकेजिंग, री एडिटिंग एंड री इंटरप्रेटिंग फेमिलियर स्टोरीज इनटू शॉर्टर मोबाइल फर्स्ट एपिसोड्स, जो डिजाइन होंगे हुक्स, रैपिड ट्विस्ट्स और क्लिफ हैंगर्स के अराउंड। और इससे मेरे दिल का एक हिस्सा काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि बीइंग अ क्रिएटर मुझे ये फील होता है कि यार इतने बड़े लेवल पे ये सारे सीरियल्स बने थे लेकिन वो आज के डेट में आर्काइवल लाइब्रेरीज में यूं ही सड़ रहे थे। बट थैंकफुली किसी के दिमाग में ये आया कि भाई उन सीरियल्स को वापस से रिजुविनेट किया जाए। वैसे फिलहाल आप अगर कोई अच्छा सा माइक्रो ड्रामा फॉलो कर रहे हैं तो उसका सजेशन मुझे जरूर देना। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na
1: pietwa la burka. Mirchi, burka. Hello?
2: Hi. You... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो।
2: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार अपने मोबाइल से? कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
1: वही मैं सुन रहा था, लगा।
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
1: हाँ जी।
2: कुकड़ों को,
1: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment.
7: Qatar का number one radio station.
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। बड़ा ही टीवी फ्रेंडली वर्जन आने वाला है धुरंधर द रिवेंज का, क्योंकि इसका टीवी प्रीमियर होने वाला है विद टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाइड बाबू मोशाय। बेसिकली इस मूवी के लिए CBFC ने 40-50 कट्स ऑर्डर किए हैं। इसी के साथ ये UA 16+ वर्जन जो टीवी पे आने वाली है वो 10 मिनट छोटी भी होगी एज कम्पेयर टू द थिएट्रिकल कट। बाकी अगर आपके कान खड़े हो गए हैं ये सुनने के लिए कि भाई डेट तो बता दे श्रुति, देन इट इज 18th of October जब धुरंधर द रिवेंज स्टार गोल्ड पे आएगी। आवारापन 2 की ह्यूज सक्सेस के बाद इमरान हाशमी इज ऑन अ डिफरेंट हाई यार, और उनकी नेक्स्ट फिल्म गन मास्टर G9 ने ऑलरेडी ट्रेड इंटरेस्ट अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। एंड फाइनली पेन मधुर ने फिल्म के ऑल इंडिया थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स अक्वायर कर लिए हैं। बाकी फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा जेनेलिया डिसूजा, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक सिंह जैसे एक्टर्स भी होंगे, विच इज सेट टू रिलीज ऑन द 27th of November, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। दृश्यम 3 की एडवांस बुकिंग्स तो आग लगा रही है भाई, आग। अजय देवगन स्टारर दी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म ने एडवांस बुकिंग्स में 1 लाख से भी ज्यादा टिकट्स ऑलरेडी बेच लिए हैं एंड इज सेट टू रिलीज ऑन द 2nd of October, जिस दिन का इंतजार हर दूसरा विजय सलगांवकर फैन कर रहा है। फिलहाल एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: are you?
1: खेलो मगर प्यार से।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही थी। आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े, लगाम लगाइए उसको, जरा पॉइंट पे आइए। बेसिकली यहाँ पे आपको ना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं कॉल करके आपके साथ इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है राजा जी। हेलो सर, कैसे हैं आप?
4: मैं एकदम बढ़िया हूँ, अब आपसे बात करके और अच्छा।
1: ये लाइन बोलने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ चलिए और अच्छा करते हैं आपकी वाइब को। जजंतरम अमंतरम के लीड एक्टर कौन थे?
4: जावेद जाफरी।
1: जावेद जाफरी डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे किस फिल्म में आ जाते हैं?
4: धमाल।
1: क्या बात। धमाल में मानव का भाई कौन है?
4: मानव का भाई अरशद वारसी।
1: क्या बात। अरशद वारसी किस फिल्म में भाई ने बोला करने का, मतलब करने का ये बोलते हैं?
4: मुन्ना भाई।
1: मुन्ना भाई में डॉक्टर अस्थाना की बेटी से किसको प्यार होता है?
4: संजय दत्त।
1: संजय दत्त किस फिल्म में जुल्मी बड़ा दुखदायक है?
4: खलनायक।
1: गाना याद किया था ना?
4: वही पहले वही आता है।
1: खलनायक में किसकी चोली के पीछे दिल है?
4: माधुरी दीक्षित।
1: माधुरी दीक्षित का घाघरा किस फिल्म में टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है?
4: ये जवानी है दीवानी।
1: ये जवानी है दीवानी में बनी के बेस्टी से किसको प्यार होता है?
4: कल की
1: ओके, पता है। कल्कि की किस फिल्म में उनके बैग का नाम बैगवती होता है?
4: बैग का नाम बैगवती होता है। मूवी याद नहीं आ रही।
1: कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे और आपको बनाएंगे हमारे आज के पहले
2: मिर्ची फिल्म ची।
4: थैंक यू श्रुति।
1: तो भाई अगर इसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल की मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे जाके आपको अपना नंबर भेजना होगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट। फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है, फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर 12 से 14 अक्टूबर DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
5: कौन है?
6: स्टेन।
5: स्टेन कौन?
6: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
5: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची फिल्म ची गेम खेलने की बात कर रही हूँ, जहाँ आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है और फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमने रजत जी से शुरू किया था, बट ही गॉट स्टक एट पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है राहुल। तैयार है आप?
3: जी जी जी।
0: ओके, सो रजत इस सवाल पे अटके थे कि कल्कि की किस फिल्म में उनके बैग का नाम बैगवती होता है।
3: ZNMD
0: में पिंक फोन कौन चलाता है?
3: ऋतिक रोशन।
0: लड्डू रायचंद किस फिल्म में बने हैं?
3: कभी खुशी कभी गम।
0: काफी म्यूजिकल हैं आप। कभी खुशी कभी गम में कह दिया बस कह दिया कौन बोलता है?
3: अमिताभ जी।
0: अमिताभ बच्चन गुरुकुल के सड़ू प्रिंसिपल किस फिल्म में बने हैं?
3: मोहब्बतें
0: में लोगों के आगे पीछे किसकी आत्मा डांस करती है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय की फिल्म जिसमें वो हॉट शायरा बनी है?
3: ए दिल है मुश्किल
0: में अलीजे से एक तरफा प्यार किसको होता है?
3: रणबीर कपूर
0: किस फिल्म में पापा पगलू बने हैं?
3: कौन से बने हैं?
0: पापा पगलू।
3: एनिमल
0: में अबरार कौन है?
3: बॉबी देओल।
0: बॉबी देओल की किस फिल्म में वाइफ स्वॉपिंग की बात होती है?
3: अजनबी।
0: क्या बात, अजनबी में बॉबी की वाइफ कौन है?
3: करीना कपूर
0: की किस फिल्म में रोबोट्स हैं?
3: रावण।
0: हाँ जी, रावण में गेम डिजाइनर कौन है?
3: शाहरुख खान।
0: कैदी नंबर 786 किस फिल्म में बने हैं?
3: वीर जारा
0: में उनकी डिफेंस लॉयर कौन है?
3: रानी मुखर्जी
0: की किस फिल्म में उनके हस्बैंड रेसर होते हैं?
3: तारा रम्पम।
0: आपने भी गेम एकदम तारा रम्पम खेला है। तो चलिए आपको भी डिक्लेयर करते हैं हमारे आज के दूसरे
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: बाकी अगर आप में से कोई इस गेम का हिस्सा बनना चाहता है तो मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे अपना नंबर DM करना मत भूलना। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल। कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस?
2: I don't have to mouth those.
3: Sorry, bro. Sorry.
2: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद। इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर, एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस।
1: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: कौन है?
4: इशांत।
5: इशांत कौन?
4: इशांत गदाधारी भीम। इशांत
5: खट खट, हु दैट?
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं। Oh, no. फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: भाई एक्सट्रीम्स के अलावा भी एक जोन होता है
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: जिसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत कम फिल्मों ने एक्सप्लोर किया है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और हम बॉलीवुड में फीमेल कैरेक्टर्स को अक्सर दो एक्सट्रीम्स में देखते आए हैं, राइट? या तो वो बहुत बेचारी सी है या फिर इतनी स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन है कि भाई उसमें कोई वीकनेस ही नहीं है। लेकिन कुछ फिल्म्स ऐसी हैं जहां विमेन को सिर्फ इंस्पिरेशनल बनाने की कोशिश नहीं की गई, उन्हें इंसान बनाया गया। वो करियर को लेकर कंफ्यूज हो सकती हैं, घर से इरिटेटेड हो सकती हैं, गलत डिसीजंस ले सकती हैं, रिलेशनशिप्स में मेस कर सकती हैं, अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर सकती हैं, या बस एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती हैं। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले वील टॉक अबाउट साल 2015 में आई फिल्म पीकू से पीकू के किरदार के बारे में। नंबर दो पे वील टॉक अबाउट साल 2012 की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से श्रीदेवी के कैरेक्टर शशि गोडबोले के बारे में। नंबर तीन पे हम बात करेंगे 2018 में आई फिल्म सर से तिलोत्तमा शोमे के कैरेक्टर रत्ना के बारे में। नंबर चार पे साल 2024 में आई फिल्म लापता लेडीज से दोनों ही फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में। और नंबर पांच पे साल 2025 में आई फिल्म मिसेस से सानिया मल्होत्रा के कैरेक्टर रिचा के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद पीकू, जिस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार और इसे लिखा है जूही चतुर्वेदी ने। एंड यू नो ये फिल्म शायद उन रेयर फिल्मों में से है जहां एक वुमन की लाइफ को किसी लव स्टोरी के थ्रू डिफाइन नहीं किया गया है। पीकू एक आर्किटेक्ट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, रिलेशनशिप्स हैं उसकी लाइफ में, एसईएक्स और मैरिज को लेकर उसके अपने ओपिनियंस हैं, और साथ में एक ऐसे फादर हैं जो लिटरली उसके पेशेंस का डेली टेस्ट लेते हैं। डायरेक्टर सुजीत सरकार और राइटर जूही चतुर्वेदी ने पीकू को आइडियल डॉटर बनाने की जगह एक कॉम्प्लिकेटेड, समटाइम्स इरिटेबल, समटाइम्स सेल्फिश बट डीपली लविंग वुमन बनाया है। एंड दीपिका पादुकोण एज पीकू ग्लैमरस हीरोइन कम एक रियल दिल्ली वुमन ज्यादा लगती है। वेल ऐसे ही बाकी के चार और कैरेक्टर्स को डिस्कस करूंगी बट इन अ वाइल, अभी के लिए एंजॉय दी अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स ऑल
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vjet bala burga.
1: Mirci, burga. Hey, hey, hey, hey. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
2: Hello.
3: Hello, ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
2: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
3: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
2: हाँ जी.
3: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
2: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
3: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे. तीन लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरिया से एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
2: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
3: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था. मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
2: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
3: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका
2: पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
3: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही
2: हैं? सुनिए मत, सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
3: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
2: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
3: आपको कॉलर ट्यून लगानी है? मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
2: हाँ बताइए
3: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
2: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
3: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
2: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
5: खट खट.
6: Who there?
5: बनता.
6: बनता who?
5: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को.
6: खट खट. Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1.

0: एक नारी या तो बेचारी या फिर सब पे भारी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से तो जनरली हमें ऐसे ही पिक्चराइजेशंस मिलते हैं इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स ऑफ आर मूवीज। अक्सर दो एक्सट्रीम्स में देखा है हमने उन्हें, या तो बेचारी होती हैं या फिर एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन जिनके पास कोई वीकनेस नहीं होती। लेकिन आज मैं पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी फिल्मों को एक्सप्लोर कर रही हूं जिनमें एक्चुअल में औरतों को समझा गया, उनके फ्लॉज को भी उतना ही एक्नॉलेज किया गया जितने उनके अच्छे एट्रीब्यूट्स को। इन द लिस्ट सबसे पहले हमने बात की पीकू के बारे में। अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म इंग्लिश इंग्लिश से श्रीदेवी मैम के कैरेक्टर शशि गोडबोले के बारे में। ये फिल्म गौरी शिंदे ने लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और ये 2012 में रिलीज हुई थी, जिसमें शशि गोडबोले एक होममेकर, एक माँ, एक वाइफ और सबसे इम्पोर्टेंट एक महिला हैं, जिसे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यार घर संभालना उसकी पूरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। इस फिल्म की ब्रिलियंस ये है कि शशि कोई रिवॉल्यूशनरी कैरेक्टर नहीं है, वो ऑर्डिनरी है। वो घर के लिए लड्डू बनाती हैं, फैमिली को खुश रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से उसी फैमिली के सामने इनसिक्योर भी फील करती हैं। सो डायरेक्टर गौरी शिंदे ने शशि की जर्नी को लैंग्वेज सीखने से ज्यादा सेल्फ वर्थ डिस्कवर करने की जर्नी बना दी और श्रीदेवी मैम ने बिना ओवर एक्टिंग के एक ऐसी वुमन को प्ले किया जिसके अंदर का कॉन्फिडेंस हम स्लोली स्क्रीन पर वापस आता देखते हैं। इन शॉर्ट, इंग्लिश विंग्लिश रिमाइंड्स अस कि कभी कभी दुनिया को इम्प्रेस करने से पहले खुद को इम्प्रेस करना जरूरी होता है। मूविंग ऑन नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट 2018 में आई फिल्म सर से तिलोत्तमा शोमे के कैरेक्टर रत्ना के बारे में, जो एक डोमेस्टिक हेल्प है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है रोहेना गेरा ने, जहां एक डोमेस्टिक वर्कर रत्ना अश्विन यानी कि एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान के यहाँ काम करती है। दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप होती हैं, लेकिन फिल्म का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या ये दोनों प्यार कर सकते हैं। फिल्म पूछती है कि भाई क्या सोसाइटी उन्हें इक्वल समझेगी। एंड डायरेक्टर रोहेना ने रत्ना को सिर्फ एक मेड या लव इंटरेस्ट नहीं बनाया, उसके अपने एम्बिशंस भी दिखाए हैं। वो टेलर बनना चाहती है, अपनी लाइफ बनाना चाहती है और अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। एंड भाई साहब, द काइंड ऑफ एक्टर तिलोत्तमा शोमे इज, उनकी परफॉर्मेंस इतनी रिस्ट्रेन्ड है कि रत्ना को देखते वक्त लगता है कि हम किसी कैरेक्टर को नहीं, किसी रियल वुमन की लाइफ क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये फिल्में अगर अभी भी आपकी वॉचलिस्ट में नहीं है देन प्लीज पुट इट इन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और बाकी की दो फिल्मों को अभी से कुछ ही देर में वापस डिस्कस करूंगी। सो यू बेटर स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: या तो बेचारी या फिर सब पे भारी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: इन जनरल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी मूवीज आई हैं उसमें महिलाओं को कुछ इसी तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है, या तो वो एकदम बेचारी सी होंगी या फिर स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन जिसके अंदर कोई कमी ही नहीं है, कोई वीकनेस ही नहीं है। वडाज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स को डिस्कस कर रही हूं जिनको देख के एक्चुअली फील हुआ यार ये तो अपनी सी कहानी लग रही है। लिस्ट में सबसे पहले हमने डिस्कस किया पीकू को, नंबर दो पे फिल्म इंग्लिश से शशि गोडबोले को, नंबर तीन पे फिल्म सर से रत्ना को, अब बारी है नंबर चार पे टू डिस्कस अबाउट लापता लेडीज की लेडीज। ये फिल्म आई थी 2024 में, डायरेक्ट किया है इसे किरण राव ने। फिल्म की ओरिजिनल कहानी बिप्लब गोस्वामी ने लिखी है लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स है उन्हें लिखा है स्नेहा देसाई ने। और अगर आप इस फिल्म को सरफेस लेवल पे देखोगे तो आपको दो दुल्हनों की हिलेरियस स्टोरी दिखाई देगी जो ट्रेन में लिटरली एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन अंदर से ये फिल्म एक बहुत सिंपल सवाल पूछती है कि अगर एक महिला को कभी खुद से डिसाइड करने का मौका मिले तो वो एक्चुअली चाहती क्या है। फिल्म में दो प्रोटैगनिस्ट्स हैं, फूल और जया। दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं लेकिन दोनों को अपनी आइडेंटिटी के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है। फिल्म की डायरेक्टर किरण राव ने फिल्म को प्रीची बनाए बिना ये दिखाया है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल जाना नहीं होता, अपनी आवाज पहचानना भी एजुकेशन है। जहां फूल का इनोसेंस और जया के एम्बिशन दोनों मिलकर एक ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। यस, लापता लेडीज इज फनी, वार्म एंड डिसेप्टिवली सिंपल, बट अंडरनीथ इट्स अबाउट वुमेन डिस्कवरिंग दैट उनकी जिंदगी उनके हाथों में है। And now, last but definitely not the least, number 5 पे let's talk about Mrs. ये फिल्म आई थी 2025 में, डायरेक्ट किया है इसे आरती काड़व ने, लिखा है हरमन बावेजा के साथ साथ आरती काड़व एंड अनु सिंह चौधरी ने। और फिल्म मिसेस की रिचा प्लेड बाय सान्या मल्होत्रा एक न्यूली मैरिड वुमन है। शादी से पहले उसके ड्रीम्स होते हैं, डांस है, अपनी आइडेंटिटी है, बट शादी के बाद सडनली उसकी दुनिया किचन, एक्सपेक्टेशंस और घर कैसे चलाना है में ही सिमट जाती है। और इस फिल्म की सबसे अनकंफर्टेबल चीज ये है कि यहाँ कोई एक विलन नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है। डायरेक्टर आरती ने रिचा को एक एंग्री फेमिनिस्ट स्टीरियोटाइप नहीं बनाया। शी इज इनिशियली एक्साइटेड अबाउट मैरिज, शी वांट्स टू फिट इन, शी वांट्स टू बी लाइक्ड, बट धीरे धीरे उसको भी रियलाइज होता है कि भाई मैं वाइफ बनी हूँ या सिर्फ एक फंक्शन बन के रह गई हूँ। इन शॉर्ट, मिसेस का सबसे पावरफुल क्वेश्चन है कि अगर एक महिला पूरा घर संभालेगी तो भाई उसकी अपनी लाइफ कौन संभालेगा। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। बड़ा ही टीवी फ्रेंडली वर्जन आने वाला है धुरंधर द रिवेंज का, क्योंकि इसका टीवी प्रीमियर होने वाला है विद टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड बाबू मोशाय। बेसिकली इस मूवी के लिए सीबीएफसी ने 40-50 कट्स ऑर्डर किए हैं। इसी के साथ ये यूए 16 प्लस वर्जन जो टीवी पे आने वाली है वो 10 मिनट छोटी भी होगी एज कम्पेयर टू द थिएट्रिकल कट। बाकी अगर आपके कान खड़े हो गए हैं ये सुनने के लिए कि भाई डेट तो बता दे श्रुति, देन इट इज 18th of October जब धुरंधर द रिवेंज स्टार गोल्ड पे आएगी। आवारापन 2 की ह्यूज सक्सेस के बाद इमरान हाशमी इज ऑन अ डिफरेंट हाई यार, और उनकी नेक्स्ट फिल्म गन मास्टर G9 ने ऑलरेडी ट्रेड इंटरेस्ट अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। एंड फाइनली पेन मधुर ने फिल्म के ऑल इंडिया थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स अक्वायर कर लिए हैं। बाकी फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा जेनेलिया डिसूजा, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक सिंह जैसे एक्टर्स भी होंगे, विच इज सेट टू रिलीज ऑन द 27th of November, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। दृश्यम 3 की एडवांस बुकिंग्स तो आग लगा रही है भाई, आग। अजय देवगन स्टारर दी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म ने एडवांस बुकिंग्स में 1 लाख से भी ज्यादा टिकट्स ऑलरेडी बेच लिए हैं एंड इज सेट टू रिलीज ऑन द 2nd of October, जिस दिन का इंतजार हर दूसरा विजय सलगांवकर फैन कर रहा है। फिलहाल एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
3: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
2: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
1: Only on Mirchi It's Hot
4: Mere bete aayenge Mere Karan Arjun aayenge
5: अरे करण अर्जुन आमिर शाहरुख ऋतिक अक्षय इमरान सबके गाने आएंगे दीदी
6: आएंगे दीदी
7: का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं, सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ?
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।

0: भैया नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। और इस बात को तो प्रूफ हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हर दूसरे मोमेंट करती रहती है। अब देखो आज के डेट में बहुत सारी तमिल मराठी बेसिकली साउथ इंडियन फिल्मों से हमारी फिल्में इंस्पायर होने लगी हैं, लेकिन ये सिलसिला काफी पहले से चलता आ रहा है। सो आज जिस फिल्म की बात कर रही हूँ उसका नाम है हद कर दी आपने, जो साल 2000 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय मनोज अग्रवाल। और इस फिल्म में रानी मुखर्जी और गोविंदा लीड रोल्स में थे, एंड कसम से दिस मूवी इज वन ऑफ माई गिल्टी प्लेजर्स। बाकी इस मूवी में एक सीक्वेंस है जहां गोविंदा एक टीवी के अंदर नजर आते हैं और उसमें वो अलग अलग अवतार लेके आते हैं, और ऑन स्क्रीन जो ऑडियंस उनको देख रही है वो काफी ज्यादा प्रफुल्लित, खुश, गदगद और बहुत ज्यादा हंसती है बेसिकली यार। सो ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है ना, वो इंस्पायर्ड था फ्रॉम अ मराठी फिल्म जिसका नाम है बालाचे बाप ब्रह्मचारी। एंड दिस इज वाई आई सेड कि भैया नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, एंड ऑफकोर्स गोविंदा जैसी अमेजिंग एक्ट जो किसी भी चीज को फुल ऑन पुल ऑफ कर लेते हैं। बाकी ऐसे ही आपकी कोई फेवरेट फिल्म है जिसके बारे में ऐसी कोई स्पेशल बात जानना चाहो तो वो नाम मुझे बताओ यार। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइटेड ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. Na vidva la burka.
1: Mirchi, burka.
2: हेलो हाँ जी बोलिए
1: क्या बोलूँ जी
2: आप बोलिए ना
1: कॉल आपने किया आप बोलिए
2: कॉल मैंने किया है हेलो
1: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
1: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
1: नींद में है क्या
2: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
1: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
2: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
1: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है हेलो
1: फिर कोई
2: यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं
1: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
2: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
1: फोन नहीं कर रहा अभी
2: आप देख बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हाँ मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा
1: हूँ
2: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
1: क्यों आराम कर दिया तुम
2: जीना बता रहा हूँ यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
1: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची भी हो तुम्हारी आवाजें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: कट कट
5: हू दैट
4: जस्सी
5: जस्सी कौन सी वाली जस्सी
4: जस्सी हु हैज कम आंटी जी
5: कट कट हू दैट
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

0: जिंदगी बिल्कुल गोलमाल वाले पप्पी भाई जैसी चल रही है यार।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून नो, आप मैं हूँ आपके साथ श्रुति। और अगर आपको गोलमाल के पप्पी भाई नहीं याद है तो भूला, अरे मतलब ये उनका बैकग्राउंड स्कोर होता था क्योंकि वो हर दूसरी चीज भूल जाते थे। और कुछ ऐसा ही जिंदगी में चल रहा है, इसलिए दुनिया में दो तरीके के भूलने वाले लोगों की बात करना चाहती हूँ, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो अगर कोई चीज भूलते हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालते हैं। मतलब ये टू डू लिस्ट बनाएंगे, रिमाइंडर सेट करेंगे एंड उस हिसाब से अपनी जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं ना, उनको भगवान ने बड़े फुर्सत में बनाया है क्योंकि इनको भूलने की आदत है, उसके लिए ये रिमाइंडर भी सेट करते हैं, टू डू लिस्ट भी बनाते हैं, लेकिन ना इनका रिमाइंडर बजता है ना ये टू डू लिस्ट खोल के देख पाते हैं। वो भूल जाते हैं कि भाई ये सब कुछ किया भी है मैंने अपने आप को याद दिलाने के लिए। और मुझे इनके बारे में इतने अच्छे से इसलिए पता है क्योंकि मैं ही ये इंसान हूँ, इस लूप में फंसी पड़ी हूँ। कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज बताइएगा। मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक और इंस्टा पे मिल जाऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
2: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।
3: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat. Yeah, I'll have this. Check this out.

0: इस वेब सीरीज को लेकर आपके दिमाग में शक है तो अपने उस शक पे यकीन कीजिए।
1: OTT एंड चिल।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। और नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली स्ट्रीम होना शुरू हुई सीरीज शक ट्रस्ट नो वन। मैं तो बोलती हूँ इस सीरीज पे ही आपको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई साहब मेरे हिसाब से तो इसमें भर भर के लेजी टीवी ट्रोप्स भरे हुए हैं, प्रेडिक्टेबल क्लूज हैं और थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज हैं। इनफैक्ट ये सीरीज तो मेरा इंटरेस्ट होल्ड करने में फेल ही हो जाती है आफ्टर अ चिलिंग सेटअप। सो बेसिकली कहानी की शुरुआत होती है मिस्टी शिमला की वादियों में, जहां परिणीति चोपड़ा डिलीवर करती है अपनी बच्ची और उस बच्ची को उसी रात हॉस्पिटल से कर दिया जाता है गायब, लीविंग अ ट्रेल ऑफ क्लूज। लेकिन इन क्लूज पे सीरीज के एपिसोड्स के पहले आप ही पहुंचते नजर आएंगे। बाकी डायरेक्टर रेंसल डिसूजा की इस सीरीज में परिणीति चोपड़ा के अलावा ताहिर राज भसीन, जेनिफर विंगेट, अनूप सोनी और सोनी रिजदान जैसे अमेजिंग एक्टर्स हैं। और इस स्टारकास्ट के अलावा इस सीरीज में और कुछ भी अमेजिंग नहीं है, कसम से बता रही हूँ। मात्र 7 एपिसोड्स की इस सीरीज को मैंने तो लिटरली फास्ट फॉरवर्ड करके देखा है यार। बाकी फिलहाल आप OTT पे कुछ ऐसा देख रहे हैं विच यू वुड वॉन्ट टू सजेस्ट टू मी, देन प्लीज कनेक्ट मिर्ची श्रुति के नाम से। हम फेसबुक या इंस्टा पे मिल सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष।
6: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हैवान के एक्सपीरियंस के बाद प्रियदर्शन नहीं करेंगे अपने साथ ये हैवानियत।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: देखो यार, कभी कभी ऑडियंस किसी एक्टर को सिर्फ एक्टर नहीं, एक पर्टिकुलर फीलिंग के साथ एसोसिएट कर लेती है, राइट? और हैवान के साथ अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की पेयरिंग में शायद वही डिस्कनेक्ट नजर आया हमें। सो प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की हेरा फेरी हो, गरम मसाला हो, भागम भाग, भूल भुलैया, दे दनादन जैसी कॉमेडीज ने एक ऐसी आइकॉनिक कॉमिक आइडेंटिटी बना दी जिसे ऑडियंस इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन हैवान में दोनों ने कॉमेडी से बाहर एक सीरियस क्राइम थ्रिलर के साथ एक्सपेरिमेंट किया अलॉन्ग विद सैफ अली खान। माइंड यू, ये 14 सालों बाद हुआ था जब सैफ अली खान और अक्षय कुमार स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे थे। सो इस फिल्म का रिपोर्टेड बजट था अराउंड 130 करोड़, लेकिन इंडिया में इसका थिएट्रिकल रन मात्र 9.92 करोड़ नेट पर क्लोज हुआ। और अब प्रियदर्शन ने कहा है कि हैवान के एक्सपीरियंस के बाद वो अक्षय के साथ नॉन कॉमेडी फिल्में तो बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके हिसाब से ऑडियंस उन दोनों को सीरियस स्पेस में देखना ही नहीं चाहती। वैसे इंटरेस्टिंग है ना, आज के टाइम में जब एक्टर्स अपनी इमेज तोड़ना चाहते हैं, ऑडियंस कभी कभी वही पुरानी केमिस्ट्री और वही फेमिलियर कम्फर्ट देखना चाहती है। मतलब स्क्रीन पर एक्सपेरिमेंट जरूर करो, बस ऑडियंस को ये मत भूलने दो कि उन्हें आपसे प्यार किस वजह से हुआ था। एंड ऑफ कोर्स, लाइक आई ऑलवेज से, कंटेंट एंड स्क्रिप्ट मैटर्स। और हैवान देखने के बाद तो मुझे ये दोनों ही इस मूवी से नदारत लगी थी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
2: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। प्रीत

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
3: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे। That used to be the spot in my school.
4: Toilet?
3: हाँ।
4: School था, कंजर खाना खोला हुआ था।
3: So, दोनों।
2: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा। नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: भट्ट
6: भट्ट, अरे भट्ट हूँ।
5: भट भट भट भट भट भट भट, बाइक बहुत आवाज करती है।
6: खट खट, हु दैट?
1: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: माशू का गाना खत्म हुआ और आपका आशिक आ गया। मस्त मौला गौरव आपके साथ। अक्टूबर में वेदर भी बदलेगा, हमारे आपकी प्लानिंग वीकेंड की भी बदलेंगी एंड हम बीच से लेकर बारबेक्यू पार्टी तक की तैयारियां करेंगे। इन सब के बीच कतर में ग्रोथ किस लेवल तक पहुंची, अगर हम बात करें तो डिजिटल ग्रोथ से कितना रेवेन्यू आया, ये सब कुछ मस्त मौला गौरव आज आपको बताने वाला है। साथ ही साथ ये भी बताने वाला है कि इस वीकेंड क्या क्या प्लान कर रहे हो और कहां कहां जा सकते हो। एंड फिलहाल के लिए तो मेरे साथ बस रह सकते हो, अगले दो घंटे हम लेकर आ गए हैं वीकेंड वाला शाम शानदार, जहां पर थर्सडे का दिन है, ढेर सारी बातें, फन, मस्ती, धमाल अवेट कर रहा है। तो देवियों और सज्जनों, रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाई लो, अपना कान टिकाई लो, मस्त मौला गौरव आ गया लेकर शाम शानदार की ये गड्डी मिर्ची पर। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Murga, murga. La virva la murga.
0: Mirchi, murga.
2: हेलो
3: विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी, नमस्कार। जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
3: हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा?
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
2: हेलो हेलो,
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
3: विनीत मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया आप मेरे
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
7: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
6: This initiative is driven by GWM.
8: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
9: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
10: दोनों मिलेगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
12: 89.6 FM, Mirchi 1,
13: it's hot.
14: Uh-huh.

0: एजी द गैंगस्टर।
1: देखे किस तरह के गाने बना देते हैं जब कक्कड़ साथ में आते हैं।
2: मस्त मौला गौरव
1: भैया, टोनी कक्कड़ तो सच में बड़े लक्की हैं। अगर बहनों का साथ ना मिले तो भाई कहाँ ही गाना गा पाएगा, है जी? वैसे मस्त मौला गौरव आ गया है लेकर अपना शो शाम शानदार।
3: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: ये स्टार्टअप की दुनिया ना वैल्यू बढ़ा रही है। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव आपके साथ है। और किसी से पूछो आज नहीं नया स्टार्टअप किया है। वेल, कुल मिलाकर हमें लगता है कि नए बिजनेस वेंचर को ये स्टार्टअप वर्ड जरूर दे देगा, लेकिन डिजिटल की दुनिया में इसका इम्पैक्ट बहुत आया है। और बात करें तो कतर के डिजिटल वर्ल्ड की एक अलग ही स्पीड तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आई है। यस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमसे एक फिगर शेयर किया है जहां पर अराउंड 130 स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए हैं हमारे कतर में, एंड इनका टोटल रेवेन्यू कतरी रियाल 178 मिलियन है। और उससे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने कैपिटल को 316 मिलियन से ज्यादा रेज किया है। ये बता रहा है कि डिजिटल दुनिया में जब ये नए नए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंटर कर रहे हैं तो किस तेजी से ये स्टार्टअप में अपने इन्वेस्ट कर इसे ग्रोथ दिला रहे हैं और इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। कुल मिलाकर 1485 न्यू लोकल जॉब्स भी इस दौरान क्रिएट की गई। डिजिटल इंक्यूबेशन सेंटर से लेकर तस्मु एक्सेलरेटर, स्केल नाउ और एसएमई गो डिजिटल जैसे इनिशिएटिव्स ने कतर के स्टार्टअप सीन को एक नेक्स्ट लेवल का बूस्ट दे दिया है। और उसका ही ये रिजल्ट है कि आप कतर में ये देख पा रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है अराउंड 1078 एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट मिला है। और बस यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप भी एक स्टार्टअप तैयार कर लो। हम भी सोच रहे हैं, चाय मस्का बन और चाय पिलाएंगे और अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाएंगे। डिजिटल मिर्ची थॉट।
3: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
4: ये

0: पता है इन्वेस्ट करने का टाइम अच्छा कब होता है? जब चीजें नीचे की तरफ जा रही होती हैं। हाँ जी, और इस पूरे हफ्ते की बात की जाए तो कतरी मार्केट में गोल्ड जो है वो 2.64% नीचे की तरफ गया है। बहुत ज्यादा नहीं गया, इतना खुश मत होइए, लेकिन अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो इसका आने वाले टाइम रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकर आ गया मस्त मौला गौरव अल फरदान एक्सचेंज गोल्ड अपडेट।
1: गोल्ड अपडेट,
0: यस। अगर बात करें तो अल फरदान एक्सचेंज जो हमारे कतर में है, पैम के एजेंट, जहां आपको मिलती है स्विट्जरलैंड की सर्टिफाइड 24 कैरेट गोल्ड, वहां पर पैम 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चना बार आपको मिलेगा एट 566 कतारी रियाल, पैम 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चना बार 2650 कतारी रियाल, पैम 10 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चना बार एट 5228 कतारी रियाल, पैम का 1 औंस गोल्ड लेडी फॉर्चना बार आपको मिलेगा 16160 कतारी रियाल एंड पैम 10 तोला गोल्ड बार एट 59990। तो इस गिरावट का फायदा उठाइए, इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अब गोल्ड ज्यादा मिलेगा और बाद में रिटर्न भी उससे ज्यादा। अल फरदान एक्सचेंज के सर्टिफाइड स्विस गोल्ड बार में पैसे लगाइए एंड आई एम श्योर रिटर्न जब अच्छा मिलेगा तो मस्त मौला गौरव को एक छोटी पार्टी दे देना यार। 89.6 मिर्ची वन पर ये थे अल फरदान एक्सचेंज के गोल्ड रेट्स। मिर्ची इट्स हॉट।
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतर। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम गोल्ड बार्स
3: एंड अर्न कतर एयरवेज एवियोस टुडे।
2: विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका

0: हाँ जी, आंखों से दरिया बह जाएगा जब मौसम अच्छा हो जाएगा खुशी के मारे भाई। आफ्टर ऑल वीकेंड की प्लानिंग अलग ही बनेगी। यस, आप है मस्त मौला गौरव के साथ और चल रहा है मेरा शो
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: वैसे सच कह रहा हूँ, आज पहली तारीख थी, सुबह उठते ही मौसम ने जो दिल गार्डन गार्डन किया है, अभी भी मन खुश है।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
1: वेदर अपडेट।
0: दिन का मैक्सिमम तापमान आज 40 से 2 डिग्री नीचे, बोले तो 38 सेल्सियस 38 डिग्री पे, एंड लोएस्ट अराउंड 31। बड़ी बात यह है कि अगले वीकेंड तक ये और अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस तैयार रहिए दोस्तों, जैसे ही मौसम बदलने शुरू होंगे हमारे आपके वीकेंड के प्लान भी चेंज होंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी का लेवल नीचे जाते ही हमारे आपके लिए आउटिंग और आसान हो जाएगी। दिन के किसी वक्त भी आउटिंग कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सुबह और शाम बेहतरीन है, क्योंकि 45% ह्यूमिडिटी, दोपहर में सूरज चाचू के साथ मिलकर हमारे ने तो छुड़ाई दे रही है। कुल मिलाकर सुबह शाम के लिए तैयार रहिए, जैसे ही मौसम बदलेगा हम सूरज चाचू से अगले 6 महीनों तक बदला लेंगे पार्टी कर करके। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अर्शद वारसी, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
2: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए।
3: वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है।
4: पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
5: उनकी दो, एक सीरीज एक फिल्म। मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
1: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: Bollywood Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
6: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
7: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
6: This initiative is driven by GWM.
8: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
9: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
10: बहुत कुछ होगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: तैयारी ऐसी करो कि एग्जाम कभी भी हो फिकर हो ही ना। और जब दुनिया के बड़े मेजर स्पोर्टिंग इवेंट की बात आती है तो कतर इतना ज्यादा प्री प्रिपेयर्ड होता है कि वो कभी भी करा लो, कतर इज ऑल रेडी। एंड अब स्पोर्ट्स फैंस के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि जापान के बाद एशियन गेम्स हमारे दोहा में होने, एंड पहले एशियन गेम्स जो होने थे वो थे दोहा 2030, लेकिन कहा ही जा रहा है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने प्रपोज किया है कि एशियन गेम्स को 2031 में कराया जाए, शिफ्ट कर दें, ताकि 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाइंग और प्रिपरेशन इवेंट की तरह ये जो काम है ना वो आसान हो जाएगा प्लेयर्स के लिए भी और सभी पार्टिसिपेटिंग नेशंस के लिए भी। तो कह सकते हैं कि ओलंपिक से ठीक पहले, एक साल पहले ये इवेंट कराया जाएगा, उसको मैचअप करने के लिए एक साल शिफ्ट करने की बात की जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, दोहा 2030 एशियन गेम्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो सीईओ हैं अहमद अब्दुल्ला अल बुनैन, उन्होंने कहा है चाहे आप इवेंट 2030 में कराइए या 2031 में, दोहा पूरी तरह से तैयार है, स्पिरिट और एनर्जी बिल्कुल हाई रहेगी सर। और पूरी दुनिया ने देखा है कि हमने जब फीफा वर्ल्ड कप कराया तो क्या जोश क्या जुनून, फिर अरब कप कराया तो क्या जोश क्या जुनून, और कोई भी मेजर स्पोर्टिंग इवेंट है बस हमारे कतर में ले आओ। फिलहाल तो हम तैयारियां करें 2027 बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की, लेकिन उसके बाद हम सब जुट जाएंगे और एक साथ हर नेशन को चेयर करेंगे जब दोहा 2030 एशियन गेम्स दोहा 2031 में होगा तो भी। और जब मैं ऐसी बातें सुनता हूं तो मुझे अपने स्कूल डेज याद आते हैं। मैं यार लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में यकीन करता था, और अगर मैंने चार चैप्टर पढ़े क्वेश्चन उसमें से आ गए तो 75 out of 100, और अगर नहीं आए तो 55 out of 100। तैयारियां मैं ऐसी करता था, मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La viva la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
4: हेलो ये हंसा से मेरी बात करा हो भाई।
5: हेलो क्या बोल रही हूँ मैं?
4: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ।
5: हाँ जी।
4: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी।
5: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी।
4: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी। आपको मालूम है आपने क्या किया है?
5: मैंने क्या किया था?
4: आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे 3 लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे जे जे जे जे, ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है। बेवकूफी की बात कर रही है।
5: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे।
4: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार।
5: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
4: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम।
5: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई है मेरे पास।
4: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप।
5: ना,
4: आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही
5: हैं? सुनिए मत, सुने। और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार
4: होगा आपके कारण से। हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ। एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ पे श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है। आप बहस करने जा रही है मेरे से?
5: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे।
4: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी।
5: हाँ बताइए
4: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को।
5: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो।
4: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है। जे
5: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
1: it's hot.
2: Festivities की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट when इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी purchases, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट, और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है, यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
6: नहीं! बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

अब इसे आप मेरी शरारत कहें या मेरी आदत, मैं महीने भर में 10-20 रियाल खर्चा करने में कभी नहीं सोचता। क्योंकि पुराने उधार चुकाने में बाकी की चीजें चली जाती ना। वैसे बात करूं तो सैलरी आ गई, अगर आपकी आ गई तो रेट्स क्या चल रहे बता देते। यस, इस वक्त एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26.31 रुपए हैं, 26.31 INR। वहीं 1 कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 90.71। अगर हम पाकिस्तान रुपीज की बात करें जनाब, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.18 पाकिस्तान रुपीज। तपाई को नेपाली रुपीज का रेट छो, दाजु 1 कतरी रियाल के बदले बहिनी 42.04 42.04 का रेट छ दाई। अगर घर भेजन लाई तो सही टाइम छो। अब बंधु इसके बाद बांग्लादेशी टका अगर बाड़ी ते पठी दो तो 1 कतरी रियाल के बदले 33.77 तो 33.77 रेट छिलम। मस्मोल गौरव के साथ मिर्ची पर आपने आईपी एक्सचेंज रेट सुने, और आईपी ऐप डाउनलोड करो तो बाकी और ढेर सारे फायदे जिसमें वोडाफोन माई बुक का सब्सक्रिप्शन ऐसे ही मिल जाता है। मिर्ची साठ।

0: मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के बाद अब हम देने जा रहे हैं, यानी कि कदर देने जा रहा है एक और प्लेनेट। मस्त मौला गौरव यहाँ आपको बताना चाहेगा कि दुनिया को एक नया प्लेनेट दिखाएगा कतर दिसंबर में, क्योंकि कतर कैलेंडर लेकर आ रहे हैं बबल प्लेनेट एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस। अब ये बबल प्लेनेट है क्या, मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ा ग्रैंड इवेंट है जो कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस साल के एंड 6 दिसंबर को आने वाला है। यस, एंड इसकी टिकट्स आपको अक्टूबर से ही मिलेंगी। इस दुनिया के अलग से प्लैनेट में क्या क्या होगा, यहाँ पे लोगों को मिलने वाली है मल्टी सेंसरी इवेंट एंड जाइंट बबल बाथ बॉल पिट, वर्चुअल रियलिटी रूम, अंडर सी एलईडी एनवायरनमेंट एंड 360 डिग्री प्रोजेक्शन, और इसके साथ ऑप्टिकल इल्यूजन की एक दुनिया जो आपको इस बबल प्लैनेट पे खोने नहीं देगी। बिल्कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूँ, 6 दिसंबर से ये हमारे कतर में शुरू हो जाएगा, तो इस विंटर सीजन फैमिली के साथ ये नया एक्सपीरियंस लेंगे हम बबल प्लैनेट में। लेकिन उसके लिए टिकट्स तो बुक करनी पड़ेगी, तैयार हो जाइए, अक्टूबर में हाथों में मोबाइल होना चाहिए और टिकट बुकिंग का बस लिंक, उसके बाद दे धकाधक अपने बुक कर लेनी टिकट, ताकि हम दुनिया के इस नए प्लैनेट पे चलें और बच्चों को अपने इस ढेर सारी मस्ती भरे पल का यादगार लम्हा दें। लेकिन याद रखिएगा, बबल से हमको अपने बचपन का वो खेल याद आता है जब घर में सर्फ आता था और उससे मिला मिला के हम लोग फूक फूक के बबल बनाने की कोशिश करते, तो उस चक्कर में मम्मी से कितना पीटते थे क्योंकि इतना सर्फ बर्बाद किया यार। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: Sham Shandar, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 55099389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
5: कटकट।
6: अबे कौन है?
5: उत्तपा।
6: उत्तपा कौन?
5: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
6: खट खट, हू दैट?
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ये अगली बात उन लोगों के लिए जो फिटनेस फ्रेंडली हैं और फ्राइडे हो या सैटरडे या फिर नॉर्मल वीकडे अपनी रूटीन को बनाए रखते हैं। तो ये है वो कैंसर वॉक जिसके लिए आपको साथ आना है। यस, हम आपको बता दें कैन वॉक विद नसीम हेल्थ केयर जो कल सुबह शुरू होगा एस्पायर पार्क में। यस, अर्ली मॉर्निंग 6 AM to 9 AM जहां शुगर एंड स्पाइस रेस्टोरेंट है उसी जगह एस्पायर पार्क में ये होना है। 2 अक्टूबर 2026 ये वो तारीख है जब हम एक अच्छी चीज के लिए अपना थोड़ा समय निकालकर इसका हिस्सा बन सकते हैं। याद रखें नसीम सर्जिकल मेडिकल सेंटर लेकर आए हैं ये कैन वॉक जिसे हम कह सकते हैं उन पेशेंट्स के लिए है जो दुनिया भर में कैंसर से लड़ रहे हैं एंड अपनी हिम्मत बनाए हुए हैं। उनके लिए हमें एक स्टेप लेना है एंड एवरी स्टेप मैटर्स। जॉइन अस फॉर दिस वॉकाथॉन जहां पर सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक एस्पायर पार्क के शुगर एंड स्पाइस रेस्टोरेंट के पास आप इस वॉक का हिस्सा बन सकते हैं एंड अगर खाली हैं तो प्लीज जरूर आइए क्योंकि मेरा यह मानना है हम चंद स्टेप्स एक साथ चलेंगे ना तो कुछ लोगों को और हिम्मत मिलेगी। इस उम्मीद के साथ कि आप और हम कल मिलेंगे इस वॉक में। मस्त मौलक और अलविदा, लौटेगा सैटरडे की शाम शानदार में। तब तक ले हबीबी मां सलामा, मिर्ची का पार्टी मोड ऑन करते हैं विद क्लब मिर्ची। इट्स हॉट, टाटा बाय।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
2: नचिकेत सर आए, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट यू नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय। आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, कह रहे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते।
1: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bolda only on Mirchi it's hot.
3: Kids are back to school, busy schedules, homework, classes, tests, phew, so much to do. We know education is important, but hey, little moments of fun are important too. So are you ready to make your school day a little more exciting?
4: Because Mirchi Recharge driven by GWM is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises, because learning comes with responsibility, but responsibility deserves a little fun too.
3: This initiative is driven by GWM.
5: Cut, cut.
6: Who there?
5: Whom are you?
6: Whom are you who?
5: Arre, whom are you looking for, madam?
6: Cut, cut. Who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi.
0: It's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burka, burka. Navid wala burka. Mirchi burka.
3: Hello?
4: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
3: हेलो।
4: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
5: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
3: वही मैं सुन रहा था, मतलब लगा।
4: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
3: हाँ जी।
4: कुकड़ों को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8 November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
7: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12 से 14 अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
8: खट खट।
9: Who that?
8: जाहिर।
9: जाहिर। जाहिर हूँ।
8: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
9: खट खट। Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.
10: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are gonna go.
11: On a ride.
0: Club Mirchi with Oyon Deka and DJ Richard. Only on.

मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ. वीकेंड रूल नंबर वन, डोंट ओवरथिंक योर प्रॉब्लम्स. रूल नंबर टू, इफ यू एब्सोल्युटली मस्ट ओवरथिंक, डू इट विद कैल्विन हैरिस प्लेइंग लाउडली. टेल मी

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
4: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
3: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कम है के?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM Mirchi 1.
11: It's hot.
12: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं।
2: oh, no.
0: फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

ये कोई बहाने की जरूरत नहीं, डीजे मिचर मिर्ची ओयोंतिका आपके साथ, यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ता है, म्यूजिक ऑटोमेटिक शॉट बस्टर्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं थैंक्स टू रिची, लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है। अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक। Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate। और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate। है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
6: खटखट।
7: कौन है?
6: स्टेन।
7: स्टेन कौन?
6: स्टेन कर दिया मेरे बैंड को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
8: खटखट, who that?
9: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
10: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
11: on a ride.
12: Club Mirchi.

Hi, darling. I want to dance with you. Dance. Dance of love. Dance.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल. कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस.
4: आई डोंट हैव टू माउथ दोज.
5: सॉरी ब्रो, सॉरी.
4: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद. इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर. एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस.
3: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldal. Only on Mirchi, it's hot.
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
7: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are gonna go
10: on a ride.
11: Club Mirchi.

0: साथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे साथ हो मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे साथ हो
1: You are vibing with Oyontika and DJ Richard on Club Mirchi.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं, वो सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ।
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

मिर्ची से स्वेटी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे. क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और यो देगा. वी आर ऑफिशियली पास्ट द पॉइंट ऑफ प्रिटेंडिंग दिस इज अ काम इवनिंग. इट्स नॉट एंड आफ्टर ऑल दैट वी आर गोइंग स्ट्रेट फॉर द एड्रेनालिन बिकॉज़ अपेरेंटली रिलैक्सेशन वाज नेवर द प्लान.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
7: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
6: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
8: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
6: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
9: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
10: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाउ। कॉल नाउ 7070-7687।
11: लेडीज एंड जेंटलमैन,
0: Club Mirchi.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
4: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके रोमांस करते थे. That used to be the spot in my school.
5: स्कूल था, कंजर खाना खोला हुआ था.
4: दोनों.
3: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा. नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल.
1: ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: लेडीज एंड जेंटलमैन.
7: Club Mirchi.

to deal with stress, we have a much easier one. Just turn up the music. 100 तरह के गाने मिलते हैं यहाँ पे क्लब मिर्ची बेबी.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. La virbala burka. Mirchi, burka.
3: Hello?
4: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
3: हेलो।
4: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
5: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार अपने मोबाइल से? कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
3: वही मैं सुन रहा था, मतलब लगा।
4: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339,39। हो गया।
3: हाँ जी।
4: कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: खट खट।
8: कौन है?
7: अज्जू।
8: अज्जू कौन?
7: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
8: खट खट, हु दैट?
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
10: क्लब मिर्ची।

मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ. वीकेंड रूल नंबर वन, डोंट ओवरथिंक योर प्रॉब्लम्स. रूल नंबर टू, इफ यू एब्सोल्युटली मस्ट ओवरथिंक, डू इट विद कैल्विन हैरिस प्लेइंग लव.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Ritchie stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: खट खट। अगर कर
7: हूँ।
6: अगर करना है तो कर, वरना छोड़ दे।
7: खट खट, हू दैट?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go. On a ride.
0: Club Mirchi.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
2: जी बिल्कुल बताइए सवाल क्या है
1: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है कैसे करूं
2: अरे तो सिंपल है ना ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ

लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ, यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ता है। म्यूजिक ऑटोमेटिक, शॉट बस्टर्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं थैंक्स टू रिची। लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: खट खट
2: हुरेट
1: अकबर
2: अकबर हु
1: अरे अकबर बता दिया है बार बार नहीं ना बता पाएंगे
2: खट खट हु दैट
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 मिर्ची इट्स हॉट
4: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो

high, darling. I want to dance with you. Dance, dance of love.

0: Richie, only on Richie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: दोस्ती का गुस्सा है मैडम. No sorry, no thank you.
2: भाई साहब, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए.
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा.
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन. It's hot.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are gonna go
8: on a ride.
9: Club Mirchi

0: तुम्हें तेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे साथ हो मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे साथ हो
1: You are vibing with Oyo Tika and DJ Richard on Club Mirchi.

0: Hot Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
2: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए जब

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

मिर्ची से स्वेटी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे. क्लब मिर्ची जा रही है, डीजे मिर्ची और दिन मिर्ची और यों देगा. We are officially past the point of pretending this is a calm evening. It's not. And after all that, we are going straight for the adrenaline because apparently relaxation was never the plan.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: FM मिर्ची वन इट्स हॉट
5: लेडीज एंड जेंटलमैन
6: वी आर गोना गो
7: ऑन अ राइड

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La vieja la burga. Milchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी,
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही है, हाँ मैं तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं
2: 9:30-10 बजे तक। ये बताओ ना बचा जाएगा?
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए।
2: हेलो,
3: हाँ विनीत जी मजा है, ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहा है, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मैं मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे मिस्टर थॉमस घोड़ी चलने वाले चलाएंगे।
2: हेलो हेलो,
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
3: विनीत मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर।
2: हाँ अरे कॉफिन ऑफिन करो, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मन मानिए।
2: अच्छा भैया
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट पटाक।
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
8: दोनों मिलेगा, मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन,
12: इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल।
13: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6
1: मिर्ची।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, थरथराते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप खोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द हिंस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल। कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस?
2: I don't have to mouth those.
3: Sorry bro, sorry.
2: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद। इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन इन दिस जॉनर एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस।
1: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: अबे कौन है?
5: उत्तपा।
4: उत्तपा कौन?
5: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
4: खट खट, हु दैट?
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं। फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: मोहब्बत के हर रंग का एहसास ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6
1: मिर्ची

0: Milci. Iskrabana, uskrabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virtua la burga. Milci, burga. Hello?
2: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो।
2: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
1: तो वही मैं सुधरा था, मतलब लगा।
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
1: हाँ जी।
2: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
5: अरे la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

0: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
1: नचिकेता राय, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय। आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते।
0: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
5: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
6: बहुत कुछ होगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।